0: that had specifically said that the chief minister should personally interact and reach out to the students. Remember, there was a committee which included ministers from both the JMM and the Congress, which had held multiple rounds of talks with these student protesters. The most recent meeting among them had to take place today. It did not take place till 5 in the evening. Then this special session or the special cabinet meeting was summoned by Hemant Soren. That meeting has just concluded, and that is when all of these announcements have taken place. Number one would be for the four student protesters and Devendranath Mehto. Two of the student protesters and Devendranath Mehto continue to be in hospital. Now, will they call off their fast? I see that perhaps the ministers or the chief minister himself could reach hospital, get those student protesters, once there is an understanding reached that they have agreed to the demands, that they are okay with an investigation being taken over by a committee headed by a retired judge. And if that happens, perhaps the CM himself could reach out to the protesters and convince them to break their fast.
1: Padmaja, stay with me. Hemant Soren has spoken to the press. Let's just listen into what the Jharkhand chief minister has just said.
2: विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं, और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही SOP बना हुआ है। मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी, और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्रों के तरफ से भी और मंत्रीगणों के तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए।
1: And NDTV's Prabhakar Kumar also joining us live from Patna tonight. He was also in Ranchi reporting extensively on these protests. Prabhakar, do you see the protests now winding up? Just stay with me for a moment, Prabhakar. Devendranath Mehto has reacted. Let's listen in. He's been on hunger strike for 16 days now.
3: हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है, और सबसे बड़ी बात जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
4: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सर,
3: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर

0: to students' key demands, but the protesters are firm on a CBI probe into the matter. Jharkhand student leader Devendra Mahato has ended his hunger fast. And now let's just get you details of the headlines coming up first before we get into what's happening in Jharkhand. The BJP has unveiled a major organizational overhaul under the party president Nitin Naveen, with a new team taking shape ahead of Mission 2029. Ram Madhav has returned to the party's top deck. Smriti Irani is back in the war room, and Deepak Mahaske has been appointed as the new IT cell chief. He replaces Amit Malviya as the BJP sharpens its organizational push. A major victory for protesting students in Jharkhand, with Hemant Soren's government accepting their key demands. The JSSC CGL examination and all exams linked to that disputed recruitment process have now been cancelled, with irregularities said to be probed. But the protesters are firm. They want a CBI probe, not the CID probe that has been going on. A political showdown has erupted in Andhra Pradesh over teacher recruitment exams. The YSRCP has alleged irregularities and questioned the selection process. While it is Chandrababu Naidu, the chief minister, who has defended it as transparent and only merit-based. And then we've had a heated exchange erupt in Tamil Nadu's assembly over political protocol and respect when it comes for the chief minister. TVK has questioned why Udayanidhi Stalin remains seated, while the DMK hit back, saying standing up is a matter of personal choice. Let's begin this Tuesday morning with the BJP, that yesterday finally unveiled its new organizational team, which is being seen as a big reset under Nitin Naveen. The new team has 65 members with a clear My Formula. There are 12 women leaders, while 6 faces are under the age group of 40. The average age of the new team is around 54. There's a significant focus as far as the poll-bound state of Uttar Pradesh is concerned, with 8 faces in the list from the poll-bound state itself. Crucially, in what is being seen as a Sabka Saath message, 2 Muslim leaders have been included, 1 OBC, and we also have another Muslim. But the big political signal is as far as comebacks are concerned. We have Smriti Irani, who's back as the National General Secretary for Uttar Pradesh, while Ram Madhav returns as the National Vice President. There's another closely watched change, which is Amit Malviya is out after heading the IT cell division. He was the IT cell chief for 11 years, now making way for Deepak Mahaske.
1: I believe ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें उसका हिस्सा बनाया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है, और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
3: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है, उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
4: मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ भाषण नहीं दिया, वो हमेशा चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति

0: हमेशा इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दें, और इसके लिए हम संगठन के माध्यम से ये आज मौका मिला है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, वो हमेशा गाइड करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और आज संगठन के माध्यम से उनके मार्गदर्शन पर हम ज़रूर काम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
1: सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया है टीम में काम करने का, और नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट काम वहाँ पर सह संयोजक का मुझे मिला है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का। नेशनल टीम में चुनौतियाँ ऐस सच तो कुछ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेरे संगठन के बॉस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और जब मिलके काम करते हैं तो चुनौतियां चाहे कोई भी आए वो बहुत जल्दी हल हो जाती हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये चुनौतियाँ सब हल हो जाएंगी।
2: अमित मालविया जी का जाना तो बहुत ही आवश्यक था, और रही बात जो बाकी टीम आई है, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, बट जिस तरीके से पार्टी ने और आपकी टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति करी है, अगर उसी सिस्टम से आप चलेंगे तो देश अब धोखा खाने वाली नहीं है। 2029 में भाजपा की और नितिन नवीन जी की नई टीम को भी टाटा बाय बाय हम करेंगे।
3: It was just last year in July of 2025 when Smriti Irani spoke to NDTV's managing editor Shiv Arur, where she said she's a part-time actor but a full-time politician. Listen in.
0: Like life comes full circle.
4: Do you miss active politics? You know, politics
0: but
4: goes up and
0: I'm
4: down.
0: Not an active
4: are
0: politics.
4: You still do
0: of
4: you still consider yourself a politician?
0: I'm a politician first, but they used to earlier say actor turned politician.
4: Yeah.
0: Somebody last night in some newsroom said, well, actor turned politician turned actor turned what?
4: Yeah.
0: The idea that a human being could do both and successfully so is an idea which will be very difficult to grasp. Because I'm the only one who's done it.
4: No, because I know you keep in touch with Amethi, you
0: keep
4: visiting.
0: I'm working.
4: You've got a base there, you're still working.
0: But
4: there.
0: I'm working, not only in Amethi, I'm working. I was last dispatched, you're given assignments within your organization.
4: Yeah.
0: My last assignment was in Bikaner.
4: Right.
0: Before that, I was dispatched to Ranchi, Jharkhand. So the organization keeps giving you work, and you have to work according to whatever your leadership decides.
4: You know, right now, in front of you, Ms. Irani, is this big TV project. It's obviously going to be a big thing. You know, it's going to run for a while. It's going to take up a lot of your time and energy. Do you see actor turning back into a full-time politician
0: but
4: at some
0: point?
4: I
0: am a full-time politician and a part-time
4: So
0: actor.
4: This is just a side project then?
0: It is a side project. For most consumers, the project is not one individual.
4: Yeah,
0: it's always a group of actors coming together, a group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix of people.
4: Yeah.
0: But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers, part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit...
4: So you're a full-time politician who's taking
0: actor,
4: some time out to do this show.
0: No, I've done it simultaneously, which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer.
4: Yeah.
0: It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight.
3: Moving on now, big relief coming in for the students in Jharkhand as the Hemant Soren government has finally agreed to their demands and cancelled the examination of the JSSC CGL. This is a decision that's come after days of protests, 3 weeks of protests and mounting pressure from the students demanding action over the examination process. Announcing that decision is the Chief Minister saying that this is after a comprehensive inquiry that now is underway. It will be conducted into all errors, minor or major, that have occurred since since 10 years, in fact, over 10 years since 2014, and all exams linked to TDPL, including JSSC, will be cancelled. In fact, hailing the government is Devinder Mahato, who has been on a hunger strike since the 2nd of August, has finally ended his fast, said that he is satisfied by the government-led probe and is grateful to the students for their support and to the government for accepting the demands of the students. However, protesters are very adamant that they want a CBI probe into the matter.
5: आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
6: आगे चूंकि हमने कई बार अपने जीवन पे देखा है कई एग्जाम को रद्द होते हुए, कई एग्जाम पर CBI जांच होते हुए, कई एग्जाम पर CID जांच होते हुए, लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि इससे छात्र को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है। ये आज CGL रद्द हुई, यही CGL को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो गारंटी दे कि आने वाले जुगो जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए।
7: वार्ता हुई, लंबी बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जाँच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सब की बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा।
8: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
9: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
10: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
11: जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
3: Student tracks to breaking news coming in, and this is in regard to the national capital, the DU professor.

0: good morning. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vada. We have a whole lot lined up for you, including Jharkhand's government that's agreed to students' key demands, but the protesters are firm on a CBI probe into the matter. Jharkhand student leader Devinder Mahato has ended his hunger fast. And now let's just get you details of the headlines coming up first before we get into what's happening in Jharkhand. The BJP has unveiled a major organisational overhaul under the party president Nitin Naveen, with a new team taking shape ahead of Mission 2029. Ram Madhav has returned to the party's top deck. Smriti Irani is back in the war room, and Deepak Mahaske has been appointed as the new IT cell chief. He replaces Amit Malviya as the BJP sharpens its organisational push. A major victory for protesting students in Jharkhand, with Hemant Soren's government accepting their key demands. The JSSC, CGL examination and all exams linked to that disputed recruitment process have now been cancelled, with irregularities said to be probed. But the protesters are firm. They want a CBI probe, not the CID probe that has been going on. A political showdown has erupted in Andhra Pradesh over teacher recruitment exams. The YSRCP has alleged irregularities and questioned the selection process. While it is Chandrababu Naidu, the chief minister, who has defended it as transparent and only merit-based. And then we've had a heated exchange erupt in Tamil Nadu's assembly over political protocol and respect when it comes for the chief minister. TVK has questioned why Udayanidhi Stalin remains seated, while the DMK hit back, saying standing up is a matter of personal choice. Let's begin this Tuesday morning with the BJP that yesterday finally unveiled its new organisational team, which is being seen as a big reset under Nitin Naveen. The new team has 65 members with a clear My formula. There are 12 women leaders, while 6 faces are under the age group of 40. The average age of the new team is around 54. There's a significant focus as far as the poll-bound state of Uttar Pradesh is concerned, with 8 faces in the list from the poll-bound state itself. Crucially, in what is being seen as a Sabka Saath message, 2 Muslim leaders have been included, 1 OBC, and we also have another Muslim. But the big political signal is as far as comebacks are concerned. We have Smriti Irani, who's back as the National General Secretary for Uttar Pradesh, while Ram Madhav returns as the National Vice President. There's another closely watched change, which is Amit Malviya is out after heading the IT cell division. He was the IT cell chief for 11 years, now making way for Deepak Mahaske.
1: I believe that ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें इसका हिस्सा बना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
3: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्र

0: व्यवसाय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।
1: आगे चूंकि हमने कई बार अपने जीवन पे देखा है कई एग्जाम को रद्द होते हुए, कई एग्जाम पर CBI जांच होते हुए, कई एग्जाम पर CID जांच होते हुए, लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि इससे छात्र को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है। ये आज CGL रद्द हुई, यही CGL को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो गारंटी दे के आने वाले जुगो जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए।
2: वार्ता हुई, लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि CGL एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पर हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि CGL का जो एग्जाम है वो रद्द होगा।
3: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
4: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
5: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
7: So in tracks to breaking news coming in, and this is in regard to the national capital, the DU.

0: overall under Pori President Nitin Naveen, with a new team taking shape ahead of Mission 2029. Ram Madhav has returned to the party's top deck. Smriti Irani is also back. She's back in the war room. And Deepak Mahaske has been appointed as a new IT cell chief. He replaces Amit Malviya as the BJP sharpens its organizational push. A major victory for protesting students in Jharkhand, with Hemant Soren's government there accepting their new demands. The JSSC CGL examination and all exams linked to the disputed recruitment process has been cancelled, with irregularities set to be probed. But the protesters want a CBI investigation into the matter. A political showdown has erupted in Andhra Pradesh, and this is after a teacher recruitment scam. The YSRCP has now gone ahead and alleged irregularities, questioning the selection process. Chandrababu Naidu, the chief minister, has defended it, calling it transparent and only merit-based. And a heated debate has erupted in Tamil Nadu's assembly over political protocol and respect when it comes to the chief minister. TVK is questioning why the former deputy chief minister Udayanidhi Stalin has remained seated, while the DMK hits back, says this is a matter of personal choice. Let's begin this Tuesday morning with the BJP that's gone ahead and unveiled its new organisational team, which is seen as a new big reset under Nitin Naveen. The new team has 65 members with a clear my formula, literally speaking, with 12 women leaders. There are 6 faces that are under the age group of 40, and the average age as far as this new team is concerned, that is coming about at 54 years of age. Do remember, the person behind it all is Nitin Naveen at 46. Well, he's only 46. There is a significant focus on Uttar Pradesh, the pole-bound state, with 8 faces in the list from that state. And of course, crucially, in what is being seen as Sabka Saath message, there are 2 Muslim leaders that have been included, one OBC, but the big political signal, that is the comeback. We're talking about Smriti Irani. Smriti Irani is back as the National General Secretary of Uttar Pradesh. Then we have Ram Madhav back as well. He returns as the National Vice President. And there's another closely watched change. Amit Malviya, who's been heading the IT cell chief, he's been the chief for the last 11 years, but he's making way now for Deepak Mahaske.
1: I believe ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है, उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
3: अविनाश जी, मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें उसका हिस्सा बनाया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर इसमें, सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
4: देखिए, मेरे जैसा साधारण सामान्य परिवार से आने वाला एक कार्यकर्ता, लंबे समय से मैं पार्टी के लिए अच्छा लगातार काम करता रहा हूँ, ये हमारे आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना दायित्व, इतना भरोसा उन्होंने

0: But sustained communication and logical responses are needed to counter misconceptions. That could become a key component of the BJP's digital strategy going forward.
1: देखिए निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है. एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है. मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे.
0: The BJP has changed the man at the helm of its social media operation. Whether this marks a deeper shift in the party's digital strategy from the warrior to the strategist will become clearer as the next election battles take shape. With Aishwarya Jain, Bureau Report, NDTV.
2: Let's just get you break news coming in, and this is in regard to it is of course Devendra Mahato, who has called off his hunger strike late last evening, hours after Hemant Soren's government cancelled all exams and recruitment need for government jobs following weeks and weeks of student protests. Thank you.

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन्स गवर्नमेंट दैट हैज एट लीस्ट एग्रीड टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। The discussion has, been going on now for days. There have been 16 days of that endless fast that's come to an end by Devendra Mahato. The decision that's come after those protests that and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing the cabinet decision was the chief minister himself. He said that there was a comprehensive inquiry which will be conducted into all errors, minor and major, that have occurred ever since 2014 and all exams linked to the TDPL, including the JSSC, that will be cancelled and hailing the government. It was Mahato who went ahead and ended his fast that he'd been on fast, to remember, from the 2nd of August, and that marked 16 days of being on that endless fast. While he's been grateful to the students for their support and the government for accepting those demands, but he's gone ahead and said that all demands haven't been met, and which is why the protests will continue.
7: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में हैं। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
0: आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन
8: चुप रहो। अरे भाई अपना काम कीजिए, चुप रहो अपना दर्शक। अगर आगे आप कर रहे हैं हम कुछ करिए नहीं रहे,
9: मुंह बंद रखो ना यार,
8: तुम बंद रहो। आपका
0: आशीर्वाद
8: गड़बड़ नहीं,
0: हम लोग का आवाज और कुछ ना हो रहा है, बहुत बल।
10: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
11: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
10: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
12: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
13: बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा, और इतने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई।
14: देर से ही सही, लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद। लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है, CBI जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए।
5: Moving on now to Andhra Pradesh, and it is the mega DSC teacher recruitment that has emerged as a fresh political flashpoint when it comes to TDP and the opposition of the YSRCP that are now trading charges over alleged irregularities in the selection process and the conduct of the examination. While the opposition held a statewide protest, it stepped up its attack on the Andhra Pradesh government. And we're talking about the former chief minister and YSRCP president, Jagan Mohan Reddy, who has alleged paper leakages and also manipulation of merit lists and irregularities in the sports quota. Now, it is Chandrababu Naidu, the chief minister, strongly defending the recruitment drive and is accusing YSRCP of attempting to stall it through

0: litigation. With this, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more.
1: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये.
2: कुछ इससे भी अनोखा.
1: कमला पसंद, सिर्फ एक. एक अनोखा स्वाद. कमला पसंद पान मसाला.
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से.
4: देश का टायर, जेके टायर.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
5: अरे मेरे राजा.
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला.
8: So many payment apps, but which one is safe?
9: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. And you keep getting rewards as well. You can also get 20 rupees cash back on your first payment above 20 rupees. Use Bheem app to pay.
10: It's the Mahi way.

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आग प्योर मसाला।
7: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
4: रियली?
7: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: हाउ?

0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमेंट बनना नहीं आसान है।
1: So many payment apps, but which one is safe?
2: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable, and you keep getting rewards as well. You can also get 20 rupees cash back on your first payment above 20 rupees. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: a big focus at 8 a.m. The BJP has unveiled its new organizational team under President Nitin Naveen, and this is being read as much more than a routine reshuffle. The composition of the team offers some clear clues about where the BJP wants to go next. You see, this new team has 65 members with a stronger emphasis on women, on younger leaders, and social representation as well. 13 women feature in the wider national setup, and the average age of this new team is around 54 years. But the strongest political signal is Uttar Pradesh. 8 members of this new team have a direct UP focus, underlining just how seriously the BJP is taking the state after that 2024 Lok Sabha setback, when its tally fell from 62 seats to 33, and the Samajwadi Party emerged as the single largest party in the state. Also, you must note, significantly, 2 Muslim leaders have been included, one OBC and another Pasmanda Muslim. And then also, let's look at the comebacks. Well, Smriti Irani returns as National General Secretary with responsibility for Uttar Pradesh. Ram Madhav returns as National Vice President, bringing back a senior leader with a long RSS and organizational background. And there's another closely watched change as well. Amit Malviya is out after 11 years as BJP's IT cell chief, making way for Deepak Mahaske. Before we get you the lowdown with my colleague Aishwarya Jain, here are the reactions you need to listen to.
1: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है, और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
3: मीना जी, मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें हिस्सा बना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है, और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
4: देखिए, मेरे जैसा साधारण सामान्य परिवार से आने वाला एक कार्यकर्ता, लंबे समय से मैं पार्टी के लिए अच्छा लगातार काम करता रहा हूँ, ये हमारे आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना दायित्व, इतना भरोसा उन्होंने व्यक्त किया है।
5: मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ भाषण नहीं दिया, वो हमेशा चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति हमेशा इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे, और इसके लिए हम संगठन के माध्यम से ये आज मौका मिला है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, वो हमेशा गाइड करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं।

0: databases, and data-driven outreach models. The idea: identify voters, understand their concerns, and communicate with them more precisely.
1: Priorities Bharatiya Janata Party ki bilkul spasht rehti hai ki janta ke seva ke liye Bharatiya Janata Party ko chunav jeetna hai aur pran pran se social media ke madhyam se hum aur hamari puri team isme kaam karegi.
0: Maske has made fighting misinformation one of his immediate priorities. His message is that propaganda may create a temporary impression, but sustained communication and logical responses are needed to counter misconceptions. That could become a key component of the BJP's digital strategy going forward.
1: देखिए निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है. एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है. मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे.
0: The BJP has changed the man at the helm of its social media operation. Whether this marks a deeper shift in the party's digital strategy from the warrior to the strategist will become clearer as the next election battles take shape. With Aishwarya Jain, Bureau Report, NDTV.
2: All right, let's turn our attention to the other big story we're tracking this morning. A major concession from the Hemant Soren government to protesting job aspirants in Jharkhand after weeks of agitation over alleged irregularities in competitive examinations. The Hemant Soren government has finally agreed to their demand and cancelled the JSSC-CGL examination. And this decision comes after days of protests and mounting pressure from students that were demanding action over the examination process. Announcing the cabinet decision, though, Chief Minister Soren said that a comprehensive inquiry will be conducted into all the errors, minor or major, that have occurred since the year 2014. And all the exams linked to TDPL, including JSSC, will be cancelled. Hailing the government, student leader Devendra Nath Mahato has ended his 16-day hunger strike. But calling this the end of the students' movement would actually be premature, you must note. The protesters have welcomed the cancellation, but they are still demanding a CBI investigation, and that there is another difficult question for the government there. Candidates who cleared the JSSC-CGL and have already been appointed to government posts, they now face uncertainty over what happens to their jobs. First, listen in to what Hemant Soren has said, followed by the crucial political reactions.
3: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं. इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है. जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में हैं. हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है. अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए. आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की. इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए, या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहां हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है. 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो MMDR एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर MMDR एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे।
4: सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो बिलिंग के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो।
5: आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन
6: चुप रहो। अरे भाई अपना काम कीजिए, चुप रहो। अगर आगे आप कर रहे हैं हम कुछ करिए नहीं रहे,
7: मुंह बंद रखो ना यार,
6: तुम बन रहे हो
5: मुझे आपका आशीर्वाद
6: गड़बड़ नहीं है,
5: हम लोग का आवाज और कुछ ना हो रहा है, बहुत बल
8: और सच्चाई का जीत हुआ है।
9: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
10: हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
11: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
12: बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा, और इतने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई।
13: देर से ही सही लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद। लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है, CBI जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए।
2: All right, on that note, let's turn our attention now to breaking news we're tracking this morning. The Bihar government has now put its version of events before the Supreme Court, defending the police response to student protests and denying allegations of disproportionate force. In fact, in its affidavit, the state says police acted when the law and order situation deteriorated and claims that 157 police personnel and 7 government employees were injured during the protests. But you know, one episode is particularly difficult to look past, which is the use of an AK-47 by a constable in Siwan. The government's own affidavit says the constable fired 4 rounds in the air after being caught in a crowd. It says no protester was hit, while also acknowledging that an AK-47 should not have been used in a law and order situation. The constable has been suspended, you must note, and departmental proceedings have begun while it

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा।

वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
1: रियली?
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
1: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
2: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
1: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. A new Nepal. New possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations.

0: ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ.
1: Let's see what action BJP takes against this minister, because he has insulted a woman who has given everything, whatever was with her. She has lost her mother-in-law, she has lost her husband in a very young age, but still she served the country very gratefully. People of India has accepted her as a Beti of India. And she has also retaliated with the same in the same manner with the same feelings and the same emotions. Now this fellow has insulted the culture of India. Now let's see what action Modi ji takes against this kind of a statement, which is bad in taste.
2: All right, moving on to the other crucial stories we're tracking. The BJP has unveiled its new organizational team under President Nitin Naveen, and this is being read as much more than a routine reshuffle. You see, the composition of the team offers some clear clues about where the BJP wants to go next. This new team has 65 members with a stronger emphasis on women, on younger leaders and social representation too. In fact, 13 women feature in the wider national setup, and the average age of the new team is around 54 years. But the strongest political signal is Uttar Pradesh. 8 members of this new team have a direct UP focus, underlining just how seriously the BJP is taking the state after that 2024 Lok Sabha setback, when its tally fell from 62 seats to 33 and the Samajwadi Party had emerged as the single largest party in the state. Also, you must note, 2 Muslim leaders have been included, one OBC, one Pasmanda Muslim. And then, of course, let's look at the comebacks. Smriti Irani returns as the National General Secretary with responsibility for Uttar Pradesh. Ram Madhav returns as National Vice President, bringing back a senior leader with a long RSS and organizational background. And there's another closely watched change, which is Amit Malviya. After being in that post for 11 long years as the BJP's IT cell chief, he is now no longer the IT cell chief because Deepak Mahaske has replaced him. Listen into these crucial political reactions.
3: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
4: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं. तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है.
5: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ. हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है. और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया. और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है उसमें वो झलक भी देखने को मिली. आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है. तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी.
6: अविनाश जी, मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं. और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है. इसके लिए 24/7 अप टू 2047 ऐसा है मार्गदर्शन. मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें उसका हिस्सा बनाया. लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप.
7: देखिए, मेरे जैसा साधारण सामान्य परिवार से आने वाला एक कार्यकर्ता, लंबे समय से मैं पार्टी के लिए अच्छा लगातार काम करता रहा हूँ, ये हमारे आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना दायित्व, इतना भरोसा उन्होंने व्यक्त किया है।
2: Alright, for a moment here, let's rewind the clock to July 2025. Smriti Irani had spoken to NDTV where she said that she's not quitting politics, but taking a break. In fact, to quote her in an interview to Shiv Arur, she said, "I'm a part-time actor and a full-time politician." Listen in to that excerpt.
0: Like life comes full circle.
8: Do you miss active politics? You know, politics
0: but
8: goes up and
0: I'm
8: down.
0: Not in active
8: are
0: politics.
8: You still do
0: of
8: you still consider yourself a politician?
0: I'm a politician first, but they used to earlier say actor turned politician.
8: Yeah.
0: Somebody last night in some newsroom said, well, actor turned politician turned actor turned what?
8: Yeah.
0: The idea that a human being could do both and successfully so is an idea which will be very difficult to grasp. Because I'm the only one who's done it.
8: No, because I know you keep in touch with Amethi.
0: I don't
8: keep visiting.
0: In touch. I'm working.
8: You've got a base there. You're still working.
0: But
8: there.
0: I'm working not only in Amethi. I'm working. I was last dispatched. You're given assignments within your organization.
8: Yeah.
0: My last assignment was in Bikaner.
8: Right.
0: Before that, I was dispatched to Ranchi, Jharkhand. So the organization keeps giving you work, and you have to work according to whatever your leadership decides.
8: You know, right now, in front of you, Ms. Irani, is this big TV project. It's obviously going to be a big thing. You know, it's going to run for a while. It's going to take up a lot of your time and energy. Do you see actor turning back into a full-time politician
0: but
8: at some
0: point?
8: I
0: am a full-time politician and a part-time
8: So
0: actor.
8: This is just a side project then?
0: It is a side project. For most consumers, the project is not one individual.
8: Yeah,
0: it's always a group of
8: right.
0: actors coming together, a group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix of people.
8: Yeah.
0: But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers. Part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit...
8: So you're a full-time politician who's taking
0: actor,
8: some time out to do this show.
0: No, I've done it simultaneously, which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer.
8: Yeah.
0: It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight.
2: All right, meanwhile, soon after Deepak Mahaske's name was announced, the 58-year-old chemistry professor turned politician was asked how he would engage with the youth. To which he replied that it would be through reels and that the youth were already on social media and that the party would try to reach them through this same. In fact, here's what he told my colleague Vishnu Shom.
9: I'm just curious to know how important is it for the BJP with elections coming up to spread the message not only of the government but of the party. How is social media essential for communications more than ever before?
10: देखिए दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि I am replacing Amit Malvi. हमारी पार्टी में हम किसी को replace नहीं करते हैं. हमको अलग-अलग दायित्व मिलता है.
9: जी.
10: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था. और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है और एक तो ये विषय था. दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियाँ और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
9: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
10: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं.

0: अपलोड करेंगे ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सके।
1: All right, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. As the three-month deadline for Maharashtra's auto rickshaw and taxi drivers to learn Marathi expires, Pratap warned that those who refuse to speak the language before the regional transport office officials will face strict action. In fact, Pratap Sarnaik said at a press conference that Maharashtra has had a rule since the year 1989 requiring auto rickshaw drivers to communicate with passengers in Marathi. He has said that complaints had emerged that several non-Marathi speaking drivers were unable to converse in the language, resulting in disputes. He's also said in some cases resulting in police FIRs. Listen in to Pratap Sarnaik's remarks.
2: Marathi alena ata 165000 lokana tar Marathi alela hai samjha pan ya pude jar tumhala Marathi yet nasel tar tabadtob konacha parwana radd honar nahi adi 30 divsachi notice dili jaid 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल। परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला। आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते।
1: Prajakta, Pratap Sarnaik saying auto and taxi drivers refusing to speak Marathi before the RTO officials will now face action. Take us to the reactions on Ground Zero and within his own party regarding this latest warning.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, the Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
3: Meetha ya namkeen, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: अ न्यू नेपाल, न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एनडीटीवी वर्ल्ड ब्रिंग्स टुगेदर द वॉइसेस डिफाइनिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस। नेपाल्स फॉरेन मिनिस्टर Sishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.

0: The average age, as far as this new team is concerned, is about 54 years of age. There's a significant focus when it comes to the pole-bound state of Uttar Pradesh, with 8 faces in the list from Uttar Pradesh, crucially in what is being seen as a Sabka Saath message. There are 2 Muslim leaders who have been included, including one OBC, but the big political signal here is of comebacks. We're talking about Smriti Mani, who is back as the National General Secretary. She's back, while there's also Ram Madhav, who has returned as the National Vice President. There's another closely watched change, which is Amit Malviya, who is out after serving 11 years as the BJP's IT cell chief, making way for Deepak Mahaske.
1: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपने टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है।
3: बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया, और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी।
4: अविनाश जी, मुझे ध्यान में ये आता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, और वो एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और प्रेरणा ये है कि हमें जनक क्षेत्र की समस्याओं का पहचानना है, उनका समाधान करना है। इसके लिए 24/7 up to 2047 ऐसा है मार्गदर्शन है। मुझे लगता है इसी बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी टीम बनाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे भी इसमें हिस्सा बना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी मिलकर, इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो यही है कि एक टीम है, और ये टीम मिलकर काम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप।
5: देखिए, मेरे जैसा साधारण सामान्य परिवार से आने वाला एक कार्यकर्ता, लंबे समय से मैं पार्टी के लिए अच्छा लगातार काम करता रहा हूँ, ये हमारे आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना दायित्व, इतना भरोसा उन्होंने व्यक्त किया है।
6: मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ भाषण नहीं दिया, वो हमेशा चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति हमेशा इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे, और इसके लिए हम संगठन के माध्यम से ये आज मौका मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, वो हमेशा गाइड करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और आज संगठन के माध्यम से उनके मार्गदर्शन पर हम ज़रूर काम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।
7: सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया है टीम में काम करने का, और नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट काम वहाँ पर सह संयोजक का मुझे मिला है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का। नेशनल टीम में चुनौतियाँ एज सच तो कुछ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेरे संगठन के बॉस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जब मिलके काम करते हैं तो चुनौतियां चाहे कोई भी आए वो बहुत जल्दी हल हो जाती हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये चुनौतियाँ सब हल हो जाएंगी।
8: अमित मालविया जी का जाना तो बहुत ही आवश्यक था। और रही बात जो बाकी टीम आई है, मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप शिद्दत से काम कर लें तो एक अलग बात है, बट जिस तरीके से पार्टी ने और आपकी टीमों ने मिलकर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति करी है, अगर उसी सिस्टम से आप चलेंगे तो देश अब धोखा खाने वाली नहीं है। 2029 में भाजपा की और नितिन नवीन जी की नई टीम को भी टाटा बाय बाय हम करेंगे।
0: So let's talk about Nitin Naveen's this new my formula when it comes to the BJP. We have to begin with, you know, the focus has been on women and youth. To start with, we have Smriti Irani, who's made a huge comeback as the National General Secretary. Second in place is Vasundhara Raje Sindhya, coming in as the National Vice President. We also have Puran Deshwari joining us as the National Vice President. And then there's Bharti Praveen Pawar as the National Vice President. The other one, as the female representation that we are going to be seeing, is Fagnon Koniak as the National Secretary, Kavita Pathidar joining as the National Secretary. And then we also have, Hemang Joshi, the Yuva Morcha President, and then Fagnon Koniak as the National Secretary, as we mentioned. And then others that are joining this new team is Rohan Gupta as the National Secretary, Jay Prakash as the National Secretary, Siddharth Shambhu as the National Secretary as well, Mriganka Dio Burman there as National Secretary, Anil Antony joining as the National Secretary, and Sangeeta Yadav also the National Secretary, Vishnu Vardhan Reddy, All Cells Joint Coordinator, Rajiv Babbar North East Joint Coordinator, Shivanand Dwivedi as the Social Media Co-Convener, and Arun Yadav as the Social Media Co-Convener as well. Now, my colleague Vishnu Som spoke with the new BJP IT cell chief. He's taken charge from Amit Malviya. He spoke with Deepak Mahaske. Let's listen in.
9: I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message not only of the government but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
10: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी। हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
9: जी।
10: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है, और एक तो ये विषय था। दूसरा, सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना। अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुँचाना।
9: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे। शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
10: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम्स हैं सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
9: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए। आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
10: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे। अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सके।
0: And that is, of course, that exclusive interview with the new BJP IT cell chief. The BJP's digital messaging basically is this, you know, they have a new commander after more than a decade. Do remember, Amit Malviya has been in that position for 11 years and leading the party's online messaging and political warfare. The BJP president has now appointed Deepak Mahaske as the party's new national social media convener. But until Malviya, Mahaske is really not known to be a prominent digital face. Let's get you more details. Let's deep dive into Mr. Mahaske.
11: A new face is taking charge of the BJP's social media ecosystem. An organization man from Chhattisgarh, Mahaske is the latest addition to Nitin Naveen's national team. His appointment comes at a time when elections are increasingly fought, not just on the ground, but across social media platforms. But Mahaske's political profile is markedly different from his predecessor, Amit Malviya. For years, Amit Malviya was one of the BJP's most recognizable digital warriors. Sharp political messaging, rapid responses, and aggressive online campaigns became closely associated with the BJP's digital strategy. Mahaske comes with a very different reputation. His political work has largely been behind the scenes, involving voter analysis, electoral data, campaign management, and targeted outreach. Chemistry master's degree, diploma in cement technology, training in computer programming, a former college-level chemistry teacher, and then a career spanning technology, agriculture, and politics. Mahaske has worked in horticulture, organic farming, and agriculture for more than three decades. His association with the BJP's technology ecosystem goes back to around 2009. Mahaske has served as chief and spokesperson of the BJP's Chhattisgarh IT cell. He has worked on electoral campaigns and data analysis across several assembly elections. Party sources say he has helped build beneficiary databases and data-driven outreach models. The idea: identify voters, understand their concerns, and communicate with them more precisely.
12: Priorities: Bharatiya Janata Party ki bilkul spasht rehti hai ki janta ki seva ke liye Bharatiya Janata Party ko chunav jeetna hai. Aur pran pran se social media ke madhyam se hum aur hamari puri team isme kaam karegi.
11: Mahaske has made fighting misinformation one of his immediate priorities. His message is that propaganda may create a temporary impression, but sustained communication and logical responses are needed to counter misconceptions. That could become a key component of the BJP's digital strategy going forward.
12: Look, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है. एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है. मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे.
11: The BJP has changed the man at the helm of its social media operation. Whether this marks a deeper shift in the party's digital strategy from the warrior to the strategist will become clearer as the next election battles take shape. With Aishwarya Jain, Bureau Report, NDTV.
0: And with that, we're slipping into a very short break. Back with the whole of

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: Let's just get you break news coming in, and this is in regard to it is of course Devendra Mahato, who has called off his hunger strike late last evening, as after Hemant Soren's government cancelled all exams and recruitment need for government jobs following weeks and weeks of student protests. Thank you.

0: सम्मान जनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउ
7: दिस इज NDTV. When it really matters.

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा जिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega?

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा ये रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य हैं और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu, Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन्स गवर्नमेंट दैट हैज एटलीस्ट एग्री टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। द डिस्कशन हैज यू नो बीन गोइंग ऑन नाउ फॉर डेज, देयर हैव बीन 16 डेज ऑफ दैट एंडलेस फास्ट हैज कम टू एन एंड बाय देवेंद्र महतो। द डिसीजन दैट्स कम आफ्टर those protests that and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing the cabinet decision was the chief minister himself. He said that there was a comprehensive inquiry which will be conducted into all errors, minor and major, that have occurred ever since 2014 and all exams linked to the TDPL, including the JSSC, that will be cancelled and hailing the government. It was Mahato who went ahead and ended his fast that he'd been on fast, do remember, from the 2nd of August, and that marked 16 days of being on that endless fast. While he's been grateful to the students for their support and the government for accepting those demands, but he's gone ahead and said that all demands haven't been met, and which is why the protests will continue.
7: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके

0: as well as the other one, which was regarding the JSPC. The decision comes after 24 days of protests, of hunger strike, mounting pressure from the students, which asked for action over examination process. The chief minister said that a comprehensive inquiry will be conducted into all the errors that have taken place. The errors were very clear. It was pointed out that the company, that is TDPL, which was blacklisted in other state governments, conducted these examinations end-to-end, and those gross errors and allegations is what led the students to protest for 24 days. Devendranath Mahato, who was on a hunger strike since the 2nd of August, broke his fast yesterday and said that he was thankful that these demands have now been fulfilled.
1: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
2: सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो विलिखित के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो।
3: आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन
4: भाई को दिखाई
3: डिमांड पूरी कर दी है सरकार।
5: अब जो है
6: आज सच्चाई का जीत हुआ है, सच्चाई का जीत।
7: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
8: हम लोग की जीत है, पूरे सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
9: जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
10: बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा। और इतने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई।
11: देर से ही सही लेकिन सरकार

0: अपना अनशन खत्म करें।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: अब झारखंड सरकार को ये निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा? दिल्ली में आंदोलन शुरू होते ही सरकार ने वार्तालाप शुरू किया था, मंत्री लोग जाके मिले, बार बार चर्चा हुई, आंदोलनकारी नहीं मान रहे थे। यहाँ की विद्यार्थी जो आंदोलन कर डिमांड रखे थे उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं था सरकार, और पहले बातचीत करके कर लेते तो इतना समस्या नहीं होता। इस प्रकार बड़ा आंदोलन चलता है तो समस्या सबको होता है। बच्चे बीमार हो गए, उनका ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों ये सब ड्रामा करे? सरकार का कॉन्फिडेंस कम है क्या? अच्छा है, उन्होंने जो वचन दिया उसको निभाए। विद्यार्थियों की उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो तो आंदोलन करेंगे।
3: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
4: Important update in the Trisha Sharma death case. CBI's chilling charge sheet in the Trisha Sharma death case, where her final message to her co-sister paints a rather chilling and a disturbing picture of her state of mind. 90 minutes before dying and taking her own life, Trisha wrote, "Let me die in peace right now." She wrote this to her co-sister and asked her to tell someone to collect her belongings the next day. Minutes later, the CCTV captured Trisha Sharma walking alone towards the terrace, that video that everyone saw. The CBI charge sheet claims that Trisha sustained mental harassment after marriage, including abortion-related pressure, humiliation, emotional abuse, and character assassination. It also says that Trisha was repeatedly called a murderer over the abortion. The CBI further says that Trisha Sharma told her mother that her husband had become both aggressive and violent and that she was very scared for her life. So that's the latest details coming in from the CBI charge sheet. Remains to be seen what happens next in the case. All right, on that note, slipping into a very short break, we come back with lots more on the other side of Breaking Ground. Stay tuned.

वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य हैं और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स।
5: Let's just get you break news coming in, and this is in regard to it is of course Devendra Mahato who has called off his hunger strike late last evening, hours after Hemant Soren's government cancelled all exams and recruitment need for government jobs following weeks and weeks of student protests.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं हजारों।
2: Good afternoon, viewers. You're watching Breaking Ground with me, Gauri Dwivedi. There's lots lined up on the show, including the language row, which makes a comeback in Maharashtra. Hindi versus Marathi is making a comeback. We get you all those details. But first up, as always, let's get you the big headlines that we have for you this hour. First up, politics over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's office tender peaks as opposition questions the 5.5 crore rupee tender issued. DMK cites irregularities, asks if it's corruption or is this gross administration lapses. Politics over Vijay Trisha salute on Independence Day as DMK mouthpiece takes on Trisha yet again. Questions Chief Minister Vijay asks, why is it that an actor was allotted government official's seat in first row? Delhi police defend Jantar Mantar protest action, deny use of excessive force, calls actions lawful, says decisions were made amidst the rapid escalation that took place. After Sonia Gandhi, it is now Congress Chief Mallikarjun Kharge who is now in the Vande Mataram row. It seems the national song was cut short at Kharge's event in Goa and BJP is now training all its guns on the Congress party. Former Ram Mandir General Secretary Champat Rai gets SIT clean chit in the Chanda Chori case. Former trust member Anil Mishra also gets a clean chit. Big tech Meta finally acts on child sexual abuse content on its platform. Government says that Meta is being cautious about the content on its platform, asserts no safe harbor will be extended to Meta for any unlawful content found on Meta's platforms. And US President Donald Trump lauds India's poll system, renews push for Safe America Act, says United States should adopt India's voter ID model. Congress party mocks, says keep Kyanesh Kumar, the election commissioner in America, and we will send EVMs as well. All right, news coming in at the top of the hour. Well, this is the Marathi language rule that has led to a huge controversy. And this time around, it is an NDA ally and Union Minister Ramdas Athavale who has slammed the Maharashtra government for a rule which requires Marathi

0: वंदे मातरम, इसका इसका भी कोई उपहास करेगा, अपमान करेगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 3 साल की सजा। ये कानून बन गया है और वो कॉपी मेरे पास है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बॉयकॉट कर गए अलग बात है, लेकिन ये संविधान में इस कानून में बदलाव हो गया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो मिस्टर खड़गे, अगर आप व्यंग करते हैं भाजपा के लोगों पर कि इन लोग फ्रीडम मूवमेंट में कहां थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आजादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं, 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा। तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इस पर कहीं नहीं थे, वंदे मातरम के निर्माण में कहीं नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूं खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं। 3 तलाक का विरोध, शाहबानों का विरोध, अभी जनगणमन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्रहित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती। जरा स्वरों को बोलो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे लगा कि एक इस विषय को पुनः स्मरण ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताया जाए, सुनाया जाए और देश को समझाया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने ही वसूलों से भाग रही है। आज मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यह भारत का ओरिजिनल संविधान, ये बड़ी कॉपी है इसकी, जब मैं कानून मंत्री था तो इसकी मैंने छोटी छपवाई और देश भर में बटा भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मेंबर थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर। मिस्टर खड़गे, आपसे मुझे एक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी मुझे आपसे एक सवाल पूछता है। इसमें कई चित्र हैं, देखिए फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है, प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके अयोध्या लौट रहे, ठीक है। और ये सब चित्र क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब आप देखिए, बस एक मिनट वक्त दीजिए, कृष्णा निकालिए उसको, कृष्ण जी वाला निकाल दीजिए, कृष्ण जी का, गणेश जी का सब निकालिए बराबर। जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक चर्चा हुई कि हजारों वर्ष के बाद भारत आजाद हो रहा है तो क्या संविधान कैसे ही प्रस्तुत कर दे? तब सबों ने तय किया नहीं, हम ओरिजिनल संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की, भारत के संस्कार के, भारत की सभ्यता के प्रतीकों को प्रस्तुत करेंगे। और वो कौन प्रतीक होंगे उन लोगों ने तय किया। ये देखिए डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे हैं। मैं देखिए ब्रह्म जी निकालो, नटराज निकालो और हनुमान जी निकालो, इनको चिंते हैं है?
1: जी
0: चिंते हैं इनको,
2: हनुमान
0: हनुमान जी है ना, गुप्ता पीरियड के हनुमान जी, देख लीजिए आप। नटराज निकाल दो खाली, बाकी इसमें वैदिक पूरा है, इसमें शिवाजी हैं, गोविंद गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, बाबर और जब नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये देखिए नटराज, खड़गे साहब आप संविधान संविधान की दुहाई देते हैं, तो मूल संविधान में भगवान राम, प्रभु कृष्ण, महादेव नहीं, ये आपके नटराज और भगवान हनुमान की तस्वीर मैंने दिखा दी आपके सामने, तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? ये धार्मिक आस्था का अपमान है क्या? क्या मतलब है इसका? इस देश को कहां ले जाएंगे मिस्टर खड़गे? बाकी पार्टियां छोटी करती है तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि वी हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑफ योर ओन पार्टी। अपनी सारी पार्टी के सारे उन आदर्शों को भूल रहे हैं जो आजादी के आंदोलन में था। आप न बंकिमचंद चट्टोपाध्याय को याद रखते हैं, न लोकमान्य तिलक को याद रखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, न आपके जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधा दिखा दिया उनका प्रस्ताव था, तो सब भूल जाएंगे आप? तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है, तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आजादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। मित्रों, एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? हमने एक छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं मुझे बताइए आप? बस्तर में, सुकना में, महाराष्ट्र में आज माओवाद समाप्त हो गया कि नहीं? और आपने टीवी पर दिखाया, आप सबको धन्यवाद, कि किस तरह से वही बेटियां जो पहले बंदूक उठाती थी आज वो खादी के कपड़े पहन के फैशन परेड में भाग ले रही हैं, ये देखा ना आपने? लेकिन उनका इशारा क्या था? जो लोग माओवाद को बौद्धिक खाद देते हैं उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, का देश को उनसे भी सावधान रहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पार्टी की ओर से, हम रचनात्मक सार्थक आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं, लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन नक्सलवाद का मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली की गोली से आती है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, मारते भी हैं। यही चिदम्बरम साहब थे ना गृह मंत्री, तो पता नहीं याद नहीं, मैं भी गया था छत्तीसगढ़ में, कितने लोग नीतीश शुक्ला भी मारे गए थे और काफी लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी। उनका स्टेटमेंट क्या था? देयर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म, वो हिंदू में छपा है, पहली बार आपको दे दी, और बाद में तो जो है सो ही है, आता रहता है।
3: All right, that of course was BJP's Ravishankar Prasad coming out with that strong statement saying that with regard to the Vande Mataram row, the Congress party now insulting the national song.

0: though it was part of the freedom struggle. In fact, the Vande Mataram controversy is only escalating. Let's play out some of those important sound bites for you.
1: याद करिए 1896 में कांग्रेस ने वंदे मातरम पहली बार गाया था. 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था. और क्या मैं किरेन रिजिजू जी से पूछ सकता हूँ उन्होंने पहली बार वंदे मातरम प्रस्ताव कब पारित किया? इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी बंद कीजिए, इससे आपके आका आपको खुश होकर और प्रमोशन नहीं देने वाले.
2: क्या है तो अभी तक तो दो ही स्टैंड में होता था, बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने और ऑलरेडी वंदे मातरम दो ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पे होगा. जो प्रधानमंत्री ने लाल किले में भाषण दिया वो भाषण देश के लिए था कि देश के इस सरकार का विरोध करने वालों के लिए था?
3: वंदे मातरम को लेकर क्या विवाद चल रहा है? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष है जयराम रमेश जी ने, उन्होंने औपचारिक बयान देने के बाद ये किसी तरह से कोई विवाद बनता नहीं है. आज वंदे मातरम की बात जो करते हैं, कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए या गीत अपने जबान से गाते हुए कभी उन्होंने अपनी शहादत दिया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद की बात तो जरूर करता है, लेकिन राष्ट्र में लोगों में दरार पैदा करने का काम करता है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम करता है, द्वेष पैदा करने का काम करता है. ये कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता.
4: Well, you know, the Congress party has put its petty politics ahead of nationalism. Do understand that the Home Ministry has issued an order stating that all six stanzas of the national song should be included on all special and official occasions. This is not just about anywhere, everywhere. This is only on special and, official functions. So I don't understand why the Congress party chooses to disrespect time to time. They have disrespected Vande Mataram during the Independence Day celebration, and they continue to do so in Goa. Mr. Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi need to apologize to the nation and then fought for our national song and our national anthem both. So the Congress party plays this petty politics.
0: In fact, another Vande Mataram controversy that has now erupted within the Congress party, with the BJP accusing the party of insulting the national song, is Mallikarjun Kharge's event in Goa, where the Vande Mataram song, which is the national song, was stopped after just two stanzas. Remember, there are six stanzas. The law requires that all six stanzas should now be sung. Mallikarjun Kharge, in fact, was seen sitting down after those two stanzas. This comes after Sonia Gandhi was seen asking for the national song to be cut short at the Congress party's headquarters on Independence Day. The BJP is now alleging that there's a pattern to it. BJP is targeting Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and of course the Congress party in what it terms as repeated disrespect towards the national song.
5: Iga Sonia Gandhi inda niven baisak sadhya? Sonia Gandhi avare karna namma rashtradavara avare eno inde madhuve adru bandru adare avu rakta haritiradela hechu kadame itali raktave alva adarinda onde mataram bagge ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನೆ ಪನ್ನೆಗಳು ಏನೇನು ನಡೆದವೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
6: Let's see what action BJP takes against this minister, because he has insulted a woman who has given everything, whatever was with her. She has lost her, her mother-in-law, she has lost her husband in a very young age, but still she served the country very gratefully. People of India has accepted her as a beti of India, and she has also retaliated.

0: माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
1: अब झारखंड सरकार को ये निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा? दिल्ली में आंदोलन शुरू होते ही सरकार ने वार्तालाप शुरू किया था, मंत्री लोग जाके मिले, बार बार चर्चा हुई, आंदोलनकारी नहीं मान रहे थे। यहाँ की विद्यार्थी जो आंदोलन कर डिमांड रखे थे उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं था सरकार, और पहले बातचीत करके कर लेते तो इतना समस्या नहीं होता। इस प्रकार बड़ा आंदोलन चलता है तो समस्या सबको होता है। बच्चे बीमार हो गए, उनका ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों ये सब ड्रामा करे? सरकार का कॉन्फिडेंस कम है क्या? अच्छा है, उन्होंने जो वचन दिया उसको निभाए। विद्यार्थियों की उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो तो आंदोलन करेंगे।
2: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हरखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना हरखंड सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा जिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू।
2: A very good afternoon to all our viewers. Thanks for tuning into NDTV. This is the Southern View for the next half hour. All the stories that matter from the south of India. Joining me on this broadcast, Vijay from Tamil Nadu. Ritu, my colleague, joins me from Bengaluru. We also will be joined in by Ashish from Hyderabad and Ashwin from Kerala. First up, there's news coming in from Tamil Nadu. I'm going to toss over straight to Vijay, who takes us through the developments there. Vijay.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग थैंक्स टू हेमंत सोरेन जी, आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल गांधी जी, जिनके परिणाम के कारण ये संभव हुआ। सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, सीजीएल जैसे एग्जाम का कैंसिल होना सबसे बड़ी मांग यही थी उनकी, वो पूरा हुआ है। ये जानते हुए कि एक गुट नाराज होगा हमसे, जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाल हैं, बच्चे हैं, उसके बाद भी सरकार ने युवाओं की बात को माना है, तो युवाओं को चाहिए था कि आप हमारी बात को माने।
2: मैम, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसको आप मनाने आई थी, क्या वो मान पाया?
3: हम लोग यहाँ पर छात्रों को उनका अमरण अनशन खत्म कराने आए थे। आप देख रहे हैं देवेंद्र महतो, हबीबा, राहुल और उनके साथ छह अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने अमरण अनशन को खत्म किया है। अन्य छात्रों से भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि सरकार ने उनकी बातों को मानने का काम किया, वो अपना अनशन खत्म करें।
4: हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और छात्रों की सारी मांगों को मान लिया गया। आपके माध्यम से जो छात्र आंदोलनरत हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, उनसे भी हमारा यह आह्वान होगा कि सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है और छात्रों को लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, अपनी किताबों में डूबे होना चाहिए। वो झारखंड का भी भविष्य है और अपने परिवार के भविष्य की डोर भी उनके ही हाथों में है। तो आपके माध्यम से उनसे ही अपील, आग्रह कि वो अब आंदोलन का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटें। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी के संवेदनशील नेतृत्व में छात्रों की तमाम मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्यक कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया था वो आज पूरा हुआ।
5: Somu Anand, my colleague joining us in order to get us details. Somu, the students will continue their protests until we achieve total victory. Puri victory ke liye aur kya karna padega Hemant Soren ki government ko?
6: देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि स्टेट की सीआईडी पे इनको भरोसा नहीं है। इसकी जो जांच हो रही है उसकी जांच अब सीबीआई को देनी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और यही एकमात्र मुद्दा अब रह गया है जिस पर गतिरोध बरकरार है और दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का एक गुट मान चुका है और उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा हेमंत सोरेन नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी
5: राइट, द डिमांड ऑफ सीबीआई प्रोब हैज नॉट बीन मेट बाय द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, व्हिच इज व्हाई द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू इन झारखंड। थैंक यू सो मच सोमू फॉर गेटिंग अस दोस डिटेल्स। सो ह्यूज रिलीफ हाउएवर कमिंग अबाउट फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड विद हेमंत सोरेन गवर्नमेंट दैट हैज एटलीस्ट एग्रीड टू दोस डिमांड्स एंड कैंसल द जेएसएससी एंड सीजीएल एग्जामिनेशन। The discussion has, been going on now for days. There have been 16 days of that endless fast that's come to an end by Devendra Mahato. The decision that's come after those protests that and mounting pressure from students demanding action in this particular regard. Announcing the cabinet decision was the chief minister himself. He said that there was a comprehensive inquiry which will be conducted into all errors, minor and major, that have occurred ever since 2014 and all exams linked to the TDPL, including the JSSC, that will be cancelled and hailing the government. It was Mahato who went ahead and ended his fast that he'd been on fast, to remember, from the 2nd of August, and that marked 16 days of being on that endless fast. While he's been grateful to the students for their support and the government for accepting those demands, but he's gone ahead and said that all demands haven't been met, and which is why the protests will continue.
7: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन।
5: Breaking updates, Congress President Mallikarjun Kharge has hit back at the criticism over the Vande Mataram controversy. He has said what kind of complaint would they file, I sing the very same Vande Mataram that Mahatma Gandhi sang, I sing what Jawaharlal Nehru sang for 18 years. Central government, including Vajpayee, sang the exact same version and so did we. And for 12 years, they have sung the very same Vande Mataram all along. If this is a crime, then they have been committing a crime for 18 years. If this is a crime, then file a case against Gandhiji. If this is a crime, file one against Nehru. If this is a crime, file one against Vallabhbhai Patel. They are simply unaware of the facts, he says. Long before they were even born, the Congress had passed a resolution deciding which national song the country would adopt. What you say becomes national. Whatever you say becomes the rule. So therefore, Mallikarjun Kharge, they're attacking the center over the entire Vande Mataram controversy. Let's listen into what exactly Kharge has said.
8: Complaint, wo kya file karenge? Jo Mahatma Gandhi ji Vande Mataram gaye, wohi mein gaya. Jo Jawaharlal Nehru gaye the, wohi gaya. अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। तुम जो बोलते वही राष्ट्र गीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की।
5: We have Tejshree joining us. Tejshree, Mallikarjun Kharge, they're maintaining that Congress has simply continued a practice followed for decades based on party's historical decision regarding a rendition of the national song. If you can take us through the details of what exactly Mallikarjun Kharge has said, how he has countered this particular Vande Mataram rendition controversy.
9: The entire controversy started from 15th of August, Independence Day, at a point of time when allegedly the Vande Mataram was being interrupted by Sonia Gandhi. And later on, in fact, on Monday,

0: जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था। और क्या मैं किरेन रिजिजू जी से पूछ सकता हूँ, उन्होंने पहली बार वंदे मातरम प्रस्ताव कब पारित किया? इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी बंद कीजिए, इससे आपके आका आपको खुश होकर और प्रमोशन नहीं देने वाले।
1: कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में दो स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट।
2: क्या है तो अभी तक तो दो ही स्टैंड में होता था, तो बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने और ऑलरेडी वंदे मातरम दो ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पे होगा। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले में भाषण दिया वो भाषण देश के लिए था कि देश के इस सरकार का विरोध करने वालों के लिए था।
0: वंदे मातरम को लेकर क्या विवाद चल रहा है? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष है जयराम रमेश जी ने, उन्होंने औपचारिक बयान देने के बाद ये किसी तरह से कोई विवाद बनता नहीं है। आज वंदे मातरम की बात जो करते हैं, कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए या गीत अपने जबान से गाते हुए कभी उन्होंने अपनी शहादत दिया है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रवाद की बात तो जरूर करता है, लेकिन राष्ट्र में लोगों में दरार पैदा करने का काम करता है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम करता है, द्वेष पैदा करने का काम करता है, ये कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता।
3: ये लोग आज वंदे मातरम की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि नौजवान के हाथ को जो काम चाहिए, रोजगार, वो आप दे नहीं पाए पिछले 12-13 साल से। स्टूडेंट सही से एग्जाम करवाने की मांग रहा है, जो एक किसान है वो अपना हक मांग रहा है, जो उद्योगपति को आप पैसे वाले को और पैसा बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं, गरीब अपना हक मांग रहा है, ये सब बातों को आप छुपाकर इससे ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। जब अंग्रेज के सामने वंदे मातरम की बात करनी चाहिए थी तब आप कहाँ थे, आपके पूर्वज कहाँ थे? आप तो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, आज हमें सिखाएंगे क्या?
4: Well, you know, the Congress party has put its petty politics ahead of nationalism. Do understand that the Home Ministry has issued an order stating that all 6 stanzas of the national song should be included on all special and official occasions. This is not just about anywhere, everywhere. This is only on special and official functions. So I don't understand why the Congress party chooses to disrespect time to time. They have disrespected Vande Mataram during the Independence Day celebration and they continue to do so in Goa. Mr. Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi need to apologize to the nation and then fought for our national song and our national anthem both. So the Congress party plays this petty politics.
5: Shifting focus to Maharashtra now, Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik has issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says drivers will first get a 1-month notice followed by a 3-month suspension and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says creating a Hindi-Marathi dispute is not right, and while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
6: Sir, तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही। आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल, 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
7: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात तो सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हजार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे है, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
8: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
5: And to get a sense of pulse on ground, our correspondent Prajakta Pol spoke to some taxi drivers in Mumbai to understand their views on this decision. Take a look at
9: Maharashtra government has made compulsory to auto rickshaw and taxi drivers to speak Marathi. 17 August day deadline has passed. Now government will start taking action against auto rickshaw and taxi drivers who cannot speak Marathi. We are here to speak to talk to some taxi drivers. Aap bataiye, aap kahan se hai?
10: Main UP se hu.
9: Aapko aati hai Marathi?
10: Marathi aati hai lekin full pura nahi aata hai. Aur samne wale bolega to apne ko pura samajh mein aata hai.
9: वो जो भी अभी गवर्नमेंट ने जो आपको दिया था ये फैसला किया, आपने एग्ज़ाम दी थी? आपने
10: एग्ज़ाम का भीड़ बहुत था, अभी जो 1 महीने का टाइम बढ़ाया गया है, अभी 1 महीने का सरकार ने टाइम दिया है, उस पीरियड के अंदर हम लोग करने वाले हैं.
9: तो मतलब आपको अगर पैसेंजर आते हैं तो कितना, मतलब क्या क्या आप बोल सकते हो?
10: पैसेंजर आएगा, किधर जाना बोलेंगे तो अपने को समझ में आता है, मीटर से बोलेंगे तो वो अपने को समझ, सब मतलब मेन पॉइंट अपने को समझ में आ रहा है.
9: दैट दे आर सेइंग दैट दे हैव गिवन एन एग्जाम बट वी कैन स्पीक मराठी, सो हियर इज अ टैक्सी स्टैंड एंड वी विल ट्राई टू स्पीक सम मोर टैक्सी ड्राइवर्स. आपको आती है मराठी, आपने सीखी?
11: हाँ सीखी मैडम, आती थोड़ा बड़ा आती है.
9: तो क्या क्या आता है आपको अभी गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, आपको मतलब पूरा अभी सीखना है या पूरा आपने एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट मिला?
11: नहीं मैडम, अभी तो केवल सीख रहे हैं जाके.
9: तो अभी कल से तो एक्शन शुरू होगा, तो क्या करेंगे?
11: तो मैडम सर्टिफिकेट का इंतजार है.
9: कहाँ से है आप?
11: मैं यूपी से, जौनपुर.
9: आप कहाँ से हो?
12: यूपी.
9: आपको आती है मराठी?
12: थोड़ा बहुत.
9: क्या क्या आता है?
12: ऐसे ही थोड़ा बहुत, समझने को तो सभी समझ लेते हैं लेकिन बोलने को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे. ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल होता नहीं मैम. लेकिन अभी क्या है, जो आ गया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा. हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, लेकिन उसको फॉलो करना ही पड़ेगा.
5: All right, so those are the reactions coming in from several of the rickshaw and taxi drivers in the city of Mumbai. Of course, several of them still learning Marathi. They are not fluent with the language, and considering most people, especially in the city of Mumbai, know Hindi, it is not necessary, is something that several of these drivers feel. In fact, at this point, we know for a fact that Maharashtra Transport Minister has issued a warning to these drivers, rickshaw as well as taxi drivers, who fail to learn Marathi. They will get a 1-month notice followed by a 3-month suspension and non-compliance could lead to permanent license cancellation. Many would say this is stringent and this is unnecessary, a very controversial order. So to speak, government now enforcing the requirement for functional Marathi knowledge among several of the vehicle drivers. But several are opposed to it. Union Minister Ramdas Athawale opposing this action. He says creating a Hindi-Marathi dispute is not right and drivers must learn Marathi, but they should not be punished simply for not knowing the language. So that's the latest we are picking up as far as the Marathi diktat in the state of Maharashtra is concerned. All right, with that, we'll slip into a short break. We have more news and updates coming up on the other side. Don't go anywhere.

0: झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है और फिर से सबको धन्यवाद। लेकिन आज मैं अपना आसन सम्मानजनक मैं स्थगित कर रहा हूँ और आगे मेरा एक संघर्ष जारी रहेगा एक रिफॉर्म को लेकर के, और मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूँ जो फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, फ्यूचर में धांधली ना हो, आने वाले जो बच्चे हैं उसको ऐसा कुर्बानी देना ना पड़े, उसको ऐसा लड़ाई लड़ना ना पड़े। जो भी पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो जब जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा देने आए तो उसको ऐसा सामना करना ना पड़े, ऐसा गारंटी वाला मैं सिस्टम चाहता हूँ। उसके लिए विधानसभा से कानून बनाना पड़े तो बनाए, अगर संविधान को संशोधन करना पड़े तो करे।
1: कई गुट में थे, सारे गुट मान लिए, एक गुट को थोड़ा झिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग।

0: Another Vande Mataram controversy now erupting within the Congress, with the BJP accusing the party of insulting the national song yet again. At Mallikarjun Kharge's event in Goa, Vande Mataram was stopped after just two stanzas, with Kharge seen sitting down. Now, this comes days after Sonia Gandhi was seen asking for the song to be cut short at the Congress headquarters on Independence Day. The BJP is now alleging a pattern targeting Sonia and Rahul Gandhi and the wider Congress over what it calls repeated disrespect towards patriotism. But Mallikarjun Kharge has hit back. He has defended the version of Vande Mataram that was sung by the Congress, saying that the Congress has simply continued the same version sung for decades, including during Vajpayee's tenure. Kharge says the Congress had adopted this practice nearly 90 years ago and has merely continued it. He says he sung the same version sung by Pandit Nehru and Mahatma Gandhi.
1: Complaint, wo kya file karenge? Jo Mahatma Gandhi ji Vande Mataram gaye, wohi mein gaya. Jo Jawaharlal Nehru gaye the, wohi gaya. Ab tak 18 saal tak unhone jo gaya hai, aaj unki central government Vajpayee ne jo gaya, wohi gaya main. Aur 12 saal tak inhone chief minister hokar अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया. अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं. अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो. तुम जो बोलते वही राष्ट्र के, आप जो कहते वही होगा. कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है. 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए.
2: याद करिए, 1896 में कांग्रेस ने वंदे मातरम पहली बार गाया था. 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था. और क्या मैं किरण रिजिजू जी से पूछ सकता हूँ उन्होंने पहली बार वंदे मातरम प्रस्ताव कब पारित किया? इसलिए अनर्गल बयानबाजी बंद कीजिए, इससे आपके आका आपको खुश होकर और प्रमोशन नहीं देने वाले.
3: कल खरगे साहब जब गोवा गए तो वहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम में दो स्टेंजा ही गाया गया. आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं. कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे. इफ दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग टू द ग्रेट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यू बेटर स्टॉप क्लेमिंग मोनोपोली एज द कस्टोडियन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट.
4: क्या है तो वो अभी तक तो दो ही स्टैंड में होता था. बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने, और ऑलरेडी वंदे मातरम दो ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पे होगा. जो प्रधानमंत्री ने लाल किले में भाषण दिया, वो भाषण देश के लिए था कि देश के इस सरकार का विरोध करने वालों के लिए था?
5: वंदे मातरम को लेकर क्या विवाद चल रहा है? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष है जयराम रमेश जी ने, उन्होंने औपचारिक बयान देने के बाद ये किसी तरह से कोई विवाद बनता नहीं है. आज वंदे मातरम की बात जो करते हैं, कभी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए या गीत अपने जबान से गाते हुए कभी उन्होंने अपनी शहादत दिया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद की बात तो जरूर करता है, लेकिन राष्ट्र में लोगों में दरार पैदा करने का काम करता है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम करता है, द्वेष पैदा करने का काम करता है. ये कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता.
6: ये लोग आज वंदे मातरम की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि नौजवान के हाथ को जो काम चाहिए, रोजगार, वो आप दे नहीं पाए पिछले 12-13 साल से. स्टूडेंट सही से एग्जाम करवाने की मांग रहा है. जो एक किसान है वो अपना हक मांग रहा है. जो उद्योगपति को आप पैसे वाले को और पैसा बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं, गरीब अपना हक मांग रहा है. ये सब बातों को आप छुपाकर इससे ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। जब अंग्रेज के सामने वंदे मातरम की बात करनी चाहिए थी तब आप कहाँ थे, आपके पूर्वज कहाँ थे, आप तो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, आज हमें सिखाएंगे क्या?
7: Well, you know, the Congress party has put its petty politics ahead of nationalism. Do understand that the Home Ministry has issued an order stating that all six stanzas of the national song should be included on all special and official occasions. This is not just about anywhere, everywhere. This is only on special and, official functions. So I don't understand why the Congress party chooses to disrespect time to time. They have disrespected Vande Mataram during the Independence Day celebration, and they continue to do so in Goa. Mr. Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi need to apologize to the nation and then fought for our national song and our national anthem both. So the Congress party plays this petty politics.
8: कांग्रेस पार्टी के नेता, विशेष रूप से गांधी परिवार और गांधी परिवार की मिजाजपुर से करने वाले उनके सारे वरिष्ठ नेता, वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है। ऐसे आप 1000 एक उदाहरण ढूंढ सकते हो कि जहां उन्होंने देश के कानून को धता बताते हुए उस कानून को भी नीचा दिखाने का काम किया है। गांधी परिवार अपने आप को सारी व्यवस्थाओं से ऊपर मानता है, हम सब ने देखा उनकी सरकार के कैबिनेट के फैसलों को भी वो तार तार करके दिखाई देते थे। मुझे लगता है कि ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर अपनी मानसिकता का परिचय दिया।
0: Well, let's go across to Aishwarya now for more on this story. And Aishwarya, it's an ever-expanding story with more and more controversy. First, what happened on Independence Day at the Congress office, and now what happened at the Goa event where Mallikarjun Kharge was there. A combative Mallikarjun Kharge, however, saying he's singing the same version as Mahatma Gandhi sang.
9: Well, we just heard from Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat, under whose ambit Vande Mataram comes, and he clearly stating that the Congress party thinks that that they are above the law, and the law that was passed by the Indian Parliament got an assent from the President of India that becomes a law for every Indian. Can you sing Half Jan Gan Man, that is now at par to Vande Mataram according to this new law? Is the question that the Bharatiya Janata Party is certainly asking from the Congress party, because now it is a law, you have to recite full 5 stanzas of Vande Mataram. You cannot cut short, and if done, then this is an insult to the national song, and certainly this will come under the violation of law according to the Prevention of Insults to National Honours Amendment Act 2026. The Congress President Mallikarjun Kharge over here clearly stating that this 2 stanzas were sung in the past as well, and during the 18 years of rule, when Atal Bihari Vajpayee government was there, and when Prime Minister Narendra Modi's government is here, and Mallikarjun Kharge stated that he has sung all those 2 stanzas. There is nothing wrong. Whatever this government wants, we cannot obey by this. But contrary to that, it is now a law, it is now an act that applies to all Indians. And if being showcased right, dishonesty towards the national song of the country, then certainly the rules are for them as well. And therefore, the reason now the Bharatiya Janata Party demanding that an action should be taken against these people.
0: That's right. Thanks so much, Aishwarya. So the government, they're pointing out that it's actually, you know, a law that has been passed, and the Congress is repeatedly breaking that law by singing only 2 stanzas of the national song. Well, and more controversy surrounding the Vande Mataram showdown, with the Union Minister H.D. Kumaraswamy targeting Sonia Gandhi over the row. Now, Kumaraswamy questioned Sonia's Indian identity, citing her Italian roots. The Congress has hit back, accusing Kumaraswamy of insulting a woman and demanding BJP action. The party says that Sonia served the nation despite personal losses and is seen by Indians as their daughter.
10: No, she is not from India. She married a person in India, Indian citizen. She is basically from Italy. Her birthplace is Italy. That's why she always, whatever Indian sentiment is there, for that she is opposing the Indian sentiment. Her husband sacrificed his life. That is right. What she has sacrificed? What is her sacrifice for India? That's why I'm telling you. Vande Mataram issue. How she behaved? How she behaved on that day? An Independence Day in the Congress office.
11: Let's see what action BJP takes against this minister, because he has insulted a woman who has given everything, whatever was with her. She has lost her mother-in-law, she has lost her husband in a very young age, but still she served the country very gratefully. People of India has accepted her as a beti of India. And she has also retaliated with the same in the same manner, with the same feelings and the same emotions. Now this fellow has insulted the culture of India. Now let's see what action Modi ji takes against this kind of a statement, which is bad in taste.
0: All right, so this has become a further controversy with the remarks made by Kumaraswamy regarding Sonia Gandhi having been born in Italy, over this whole controversy over Vande Mataram and the singing of two stanzas. Remember, this took place on the 15th of August at the Congress office when Vande Mataram was being sung, and after two stanzas, you can see Sonia Gandhi there, you know, indicating that that two stanzas are over, and she was trying to make them stop playing the rest of the song. Now, further controversy with Kumaraswamy's jibe. But let's shift focus now to Tamil Nadu, where politics is brewing over the proposed shift of Chief Minister C. Vijay's office from Fort St. George to Namakkal, Kavignar, Malagai. While work is reportedly already underway, the BJP's question of 5.5 crore tender floated for the shifting, asking why

0: been on a hunger strike since the 2nd of August, has said that he is satisfied by the government-led probe and is grateful to the students for their support and to the government for accepting their demands. The students were on day 24 of their protests on Monday.
1: इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए।
2: यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को, और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है, और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूं।
3: आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत हुआ है, आज सच्चाई का जीत।
4: ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे मीडिया बंधु का भी जीत है जिन्होंने लगातार हमें कवरेज किया, तो उन तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
5: हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा।
0: Let's now get you the latest in the Twisha death probe and the CBI's chilling charge sheet in the Twisha Sharma death case. Twisha's final message to her co-sister paints a chilling picture of her state of mind. 90 minutes before she died by suicide, and that is something that has been confirmed now by the CBI charge sheet. Twisha wrote, "Let me die in peace right now," to her co-sister and asked her to tell someone to collect her belongings the next day. Minutes later, the CCTV then captured Twisha walking alone towards the terrace. The message has now emerged as a key piece of evidence in the CBI's investigation into the alleged mental cruelty faced by Twisha at the hands of her husband, Samarth Singh, and mother-in-law, Giribala Singh, a former judge. The CBI charge sheet claims that Twisha sustained mental harassment after marriage, including abortion-related pressure, humiliation, emotional abuse, and character assassination. It also says that Twisha was repeatedly called a murderer over her abortion. The CBI further says Twisha told her mother that her husband had become aggressive and violent and that she was scared. Twisha Sharma, a 33-year-old model and actress, had met Samarth Singh through a dating app in 2024. The couple married in December 2025, and then in May, on May 12th, in fact, Twisha was found hanging at her marital home in Bhopal. Extremely tragic case there. With that, we'll slip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay with us.

0: Welcome back. In shifting our focus to Maharashtra, where the state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says that drivers will first get a 1 month notice followed by a 3 month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation if you don't know how to speak in Marathi. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language. Take a listen to all the reactions coming in, and then we'll tell you what's next for all the drivers, the taxi drivers, the auto rickshaw drivers in Maharashtra who don't know how to speak in Marathi.
1: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 165,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
2: की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चलाकर 20-30 हजार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे है, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
3: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
0: Let's now give you a lowdown of the Marathi taxi driver crackdown and what happens next to all the taxi drivers, the auto rickshaw drivers who have failed to learn Marathi so far. First up, what happens next? So the government says that we will give you a 30-day notice if Marathi requirement has not been met. Second, 3-month license suspension for non-compliance and permanent cancellation if you still have not complied and if you still haven't learnt Marathi. Then, apart from that, so far in Maharashtra, 1.25 lakh drivers have been exempted from these warnings because they have the government Marathi certificate with them. They are government Marathi certificate holders. Apart from that, the transport minister of Maharashtra says that not speaking Marathi will not be accepted, that will not be tolerated. These are some of the basic things as to what will happen next. But let's now take you through the big questions on this issue. Number one, language training over road safety training. We ask that because while the government has come out with such a directive, on the other hand, there have been civic apathy incidents happening in Maharashtra back to back with an 11-year-old boy who died in Maharashtra's Pune. Second question that matters, that's what we ask you on Prime 5, is why target defenseless taxi drivers? Third, Targeting innocent cabbies for politics? These are the questions that matter. That's what we're asking on the show today. Apart from that, cultural identity over livelihood of drivers, with the ministers coming out and saying that speaking Marathi is extremely important. And these are some of the top five questions that we're asking on the show today. Apart from that, to get a sense of the pulse on ground in Maharashtra.

0: सामने वाला बोलेगा तो अपने को पूरा समझ में आता है।
1: वो जो भी अभी गवर्नमेंट ने जो आपको दिया था ये फैसला किया, आपने एग्जाम दी थी? आपने
0: एग्जाम का भीड़ बहुत था, अभी जो एक महीने का टाइम बढ़ाया गया है, अभी एक महीने का सरकार ने टाइम दिया है, उस पीरियड के अंदर हम लोग करने वाले हैं।
1: तो मतलब आपको अगर पैसेंजर आते हैं तो कितना, मतलब क्या क्या आप बोल सकते हो?
0: पैसेंजर आए गए किधर जाना बोलेंगे तो वो अपने को समझ में आता है, मीटर से बोलेंगे तो वो अपने को समझ, सब मतलब मेन पॉइंट अपने को समझ में आ रहा है।
1: That they are saying that they have given an exam, but we can speak Marathi. So here is a taxi stand, and we will try to speak some more taxi drivers. आपको आती है मराठी, आपने सीखी?
2: हाँ सीखी मैडम, आती है, थोड़ा बड़ा आती है।
1: तो क्या क्या आता है आपको अभी गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, आपको मतलब पूरा अभी सीखना है या पूरा आपने एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट मिला?
2: नहीं मैडम, अभी तो केवल सीख रहे हैं जाके।
1: तो अभी कल से तो एक्शन शुरू होगा, तो क्या करेंगे?
2: तो मैडम सर्टिफिकेट का इंतजार है।
1: कहाँ से है आप?
2: मैं यूपी से, जौनपुर।
1: आप कहाँ से हो?
3: यूपी।
1: आपको आती है मराठी?
3: थोड़ा बहुत।
1: क्या क्या आता है
3: ऐसे ही? थोड़ा बहुत समझने को तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन बोलने को थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल होता नहीं मैम, लेकिन अभी क्या है जो आ गया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन उसको फॉलो करना ही पड़ेगा।
4: And we'll see on the stories from Maharashtra. An 11-year-old boy, Rishabh Patol, was killed in a tragic road accident in Maharashtra's Pune, that's in Pune's Bilavadi Malang area, and this incident happened on Monday evening. According to the initial reports, the boy was traveling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skid after hitting a pothole. The 11-year-old fell into the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot because he fell on that pothole and there was a moving truck that went over him. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of roads and potholes in the area.
5: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से। नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे ही बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है।
4: And we have some breaking news coming in for you. This is from the state of Himachal Pradesh, where the Bharatiya Janata Party has now hit out at the Himachal government, saying that the Congress model of governance in Himachal is luto and todo. Himachal government has no money, but Congress can pay for massively failed Rahul Gandhi's Gen Z event. Himachal Congress government now plans to reduce IAS, IFS, IPS officers to curb bureaucratic costs. The truth is that they don't have money to pay. Himachal's common man has been hit with one burden after another, and the BJP has given out a list of rising price in the state of Himachal Pradesh under the Congress government. That's number one. Diesel VAT hiked by rupees 7.50 per litre. Number two, electricity and water charges also increased. Stamp duty registry charges also raised up to rupees 5 litre fuel cess cleared. And all this just 6 days ago, they slapped widow and orphan cess on petrol as well. Meanwhile, BJP says that under Rahul Gandhi, Congress has only one job, to take money away from the common people. And these are the basic demands that the BJP is asking. However, the condition, the state of Himachal Pradesh is only worsening under the Congress government. And shifting our focus now to the global lens. In Pakistan, the country's political crisis has now taken a dramatic new turn. And we say that because in an unprecedented intervention, the Supreme Court of Pakistan has now stepped in to break weeks of administrative deadlock, and that is over the former PM of Pakistan, Imran Khan's health. The court has ordered that the former Prime Minister should be

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: R Pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: You can feel how NDTV is doing, you can see it in the data, then
1: it's proper
0: all of
1: validation.
0: You and everyone else will have to accept that, yeah, there's something happening here. So we want ratings to come back. It's like fighting an election and not knowing whether you won. Because you worked hard, you know, your people went out, your panna pramukhs and bhoot prachar, this, that, you really tried very hard, and then they won't tell you who won. I think that's terrible. We want elections to be held fairly, freely, and we want to know who won. So we want, similarly, for ratings to come back. It's very important because NDTV at this moment is being priced at last year's ratings, which is very unfair because it's grown a lot since then. To what extent has it grown? How much has it grown? We know only once ratings come back. So we're keen that ratings come back, and we're looking forward to this issue getting resolved as quickly as possible so people can see what's happening.
2: राहुल कवल एक जैसा कि नाम है तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है आप कम समय में किया तो जो कंटेंट क्रिएटर्स या मीडिया में जो आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या 3 एडवाइस आपकी रहेंगी मेन
0: नहीं सबसे बड़ी एडवाइस तो है कि अपना काम ईमानदारी से करो ये पैसे लेके खबरें मत दिखाओ ऐसा कई भाई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिएटर्स हैं सब नहीं उनमें से कुछ मैं अभी इलेक्शन कवर करने गया था कईयों का रेड कार्ड निकला हुआ है कि इतने दोगे तो ऐसा हो जाएगा एक रील के इतने एक वीडियो के इतने ये तो गलत है बॉस ये तो एकदम ही गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए तो मेरा नहीं मानना कि जैसे ये कह देना कि सारे मेन स्ट्रीम चैनल बिके हुए हैं गोदी मीडिया है ये ठीक नहीं है उसी तरीके से ये कह देना कि सारे इन्फ्लुएंसर्स बिके हुए वो भी ठीक नहीं है मुझे लगता है कि कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि अपना काम वाकई में इंडिपेंडेंस के साथ एडिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ करें उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी राय से इत्तेफाक रखूं या ना रखूं मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करें बुलंदी से बेखौफ होकर अपनी बात रख रहे हैं जो कि अच्छी बात है लोकतंत्र में ये होना चाहिए और उनकी मैं इज्जत भी करता हूँ दूसरी तरफ कई ऐसे भी हैं जो कि पैसे लेके आप उनसे कुछ भी बुलवा लो उनको पैसे दो कोई ब्रांड इंडोर्स करना हो कोई ट्रेंड चलाना हो ये वो इतने पैसे दो मार्केटिंग टीम देगी या कोई पार्टी देगी वो कुछ भी कर देंगे ये तो गलत है वो अब मेन स्ट्रीम चैनल करे तो भी गलत है कोई इन्फ्लुएंसर करे तो भी गलत है तो मुझे लगता है ये जो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाइनरी बना देते हैं कि सही गलत मेन स्ट्रीम बस ऐसा नहीं है बस मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई संस्थान हैं कई प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत मेहनत से शिद्दत से अपना काम करने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के बीच में भी कई सारे हैं जो कि बहुत एफर्ट से अपना काम करने की कोशिश करते हैं दूसरा मेरा ये है कि साइड ना लो ये जो एक फैशन है कि रील में या वीडियो में लाइक्स सब्सक्राइबर्स तब बढ़ेंगे जब कुछ एजी बोलते हैं क्यों भाई क्योंकि जो वास्तविकता है ज़िंदगी वो बहुत ही गंभीर है उसमें कुछ सही है कुछ गलत है सरकार हो या विपक्ष हो कुछ वो अच्छा करेगी कुछ बुरा करेगी आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अच्छी बात को अच्छा बोलो बुरी बात को बुरा बोलो ये कह देना कि सभी कुछ खराब है या ये कह देना कि सभी कुछ अच्छा है वो दोनों गलत है मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए गुड सेंस होना चाहिए आपकी कोशिश आखिरकार हाँ या ना नहीं है भाई उसमें कई सारे शेड्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है मुद्दों के बारे में गंभीरता से गहराई से सोचने की ज़रूरत है ये रील में कि दौड़ जाए मेरा इंटरव्यू या दौड़ जाए मेरी रील वो डिटरमिन करोगे तो यू आर जस्ट स्लिपिंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स
3: राहुल व्हेन यू जॉइंड एनडीटीवी इट वाज फेमसली सेड बाय समवन यू नो आई नो दैट एनडीटीवी इज नाउ डेड व्हाट डू यू मेक ऑफ दोस कमेंट्स
0: यू नो आई डोंट थिंक एनी वन पर्सन कैन डिटरमिन वेदर एनडीटीवी लिव्स और डाइज यू नो फॉर 3 डेकेड्स अ लीजन ऑफ फैबुलस जर्नलिस्ट एडिटर्स एंकर्स प्रोड्यूसर्स वीडियोग्राफर्स have worked on building this brand. The connect it has with audiences in India, internationally is very deep. It is the work that we will do that will determine how this brand stands, thrives, and heads into the future. I know that there are people in multiple newsrooms that would like nothing better than for NDTV to die, because an NDTV which is alive, an NDTV which is kicking, an NDTV which is breaking news, in Davos, during the budget, during elections, is their worst nightmare. You don't want a competition, and you know who can compete with you, you know who can beat you, you know who can outthink you, and naturally, if I have a competitor I'm really worried about, I'd like that competitor to die. It's the most obvious, instinctive human reaction, and that's fine. I mean, I don't think anybody can kill NDTV. The idea of NDTV is an idea that's very deeply rooted in the fabric of the minds of our consumers. My responsibility is to keep that idea alive, to build on it, to give it a manifestation in its new avatar, which people connect with, they like, they watch, they appreciate, and that's what we're working towards. And that is what will determine, Rohil, whether NDTV lives, thrives, or dies. And no one person's like or dislike has anything to do with that.
1: Now, News 18 India has a tagline, Desh Nahi Jhukne Denge. Republic

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: ऑक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: A world of questions, ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
4: New rules of engagement, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears faster, bolder, more restless. It doesn't stop, neither do we. NDTV, when it really matters.
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
4: New rules of engagement, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears faster, bolder, more restless. It doesn't stop, neither do we. NDTV, when it really matters.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज़।

0: वंदे मातरम गए, अगर ये गुनाह है तो गुना 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर।
1: अरे मैं जब एमएलए बना था ये अमित शाह अभी उठा नहीं था, उनका कितना 57-58 है कितना हा? ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है, कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है, और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम?
2: क्या औकात है अटैक करने की? वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, ये थे तब दूम दबा के या तो गायब हो गए थे या दूम हिला के नरे वो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, ये बोलेंगे वंदे मातरम पे? औकात है इनकी, आ जाएं सामने डिबेट करें वंदे मातरम, हम बताते हैं इनको। तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी।
3: 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था।
4: कांग्रेस पार्टी के नेता, विशेष रूप से गांधी परिवार और गांधी परिवार की मिजाजपुर से करने वाले उनके सारे वरिष्ठ नेता, वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है। ऐसे आप 1000 एक उदाहरण ढूंढ सकते हो।
5: एक इतना चिंता, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूंगी कि इस तरह से उनमें तड़पण होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बीजेपी भाव की बत्ती बनते अब देश।
6: So while the Congress talks about technicalities and history, making matters worse for them are leaders like their Member of Parliament, Imran Masood, who made the singing of Vande Mataram an issue about his faith.
7: जब वंदे मातरम को इनका विरोध था, वंदे मातरम बोल के लोग नारा देके जेल में जाते थे, उस वक्त ये लोग भागते थे, इनका वंदे मातरम को विरोध था। और आज वंदे मातरम की बात करते हैं, वो पूरा वंदे मातरम वो जानबूझ के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं।
8: भैया आप पढ़ो ना, मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूँगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा, हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं?
6: And that brings us to the simple questions. Will the national song now be sung in its various versions? Why the discomfort with Vande Mataram in full? And is the national song being used to bait the opposition into a test of nationalism? And let me actually start by putting that question to Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP and also somebody who has an additional responsibility. Congratulations, first of all, on that, Pradeep.
9: Thank
6: Bhandari.
9: You very much.
6: The Congress will say this was the version, and that's what Mr. Kharge said, that Jawaharlal Nehru sung this version, Rabindranath Tagore sung this version, Gandhi ji sung this version. So why should the Congress sing any other version just because you insist?
9: We all follow the Constitution of India, and the Constitution of India tells us that any law which is passed by the Indian Parliament has to be followed by the citizens of the country, and every patriot does it who believes in the Constitution of India. Only those who are political fronts of the Dimagi Naxal ecosystem will not follow the law of the land. So A, this is the law of the land which is passed by the parliament. B, let me take the argument forward. If we extend this argument ki bhai musalman ke neta ko dikkat hai, hame dikkat hai, usko dikkat hai, with that same concept, Article 370 was abrogated by the parliament of the country. Earlier you used to have two flags, not just one national flag, and the Congress also opposed it. With the same premise, the Congress party even opposed CA with the same premise, the Congress party has opposed various laws passed by the parliament of the country. And this is exactly the Dimagi Naxal ecosystem which the Prime Minister spoke about. But I'll make a very important point and factual inaccuracies in Congress's argument. Factual inaccuracy number one, that A, is the Congress party indicating that every freedom fighter who sang Vande Mataram in entirety in 1905 was doing Hindu-Muslim? Point number one. Point number two, it was no other freedom fighter except Jawaharlal Nehru who succumbed to Muslim League's pressure in 1937. I have Nehru on record on 20th October 1937 saying that according to Nehru, it would irritate the Muslim League and Muslims. And with the same premise, you had the partition happening. So just because something has happened does not mean it is correct. And I'll tell you why am I saying. On the eve of independence, on 15th August 1947, on 6:30 a.m., on Akashwani radio, you have Sardar Patel requesting Pandit Omkarnath Thakur to recite the entire Vande Mataram. On 15th August, on his personal request, because Nehru had objected to it. So the essence of the Indian constitution always was the entire Vande Mataram, and more importantly, Padmaja, it's the law of the land which everybody has to apply to. If you do not do so, well, fine, that exposes your Dimagi Naxal mindset and law will take it soon.
6: Okay, you brought in Dimagi Naxal also. I will put that question. I will put that question.
9: Will you follow the law of the land or not as a citizen of the country?
6: Okay, I will put that question to Hussain Dalwai and Vivek Bansal, both from the Congress, who are joining us in just a second. But I want to also bring in Sumitra Chatterjee, who is an MLA of the BJP, full disclosure, and a descendant of Bankim Chand Chatterjee himself. Mr. Chatterjee, you have written a very long letter to Mrs. Sonia Gandhi, but I want to point out some parts of what you have said. You have said ki aapke haav bhav dekh karke main atyant vyathit ho gaya aur ek gehri peeda shunyata aur shobh ke saath main ye patra likh raha hu. Now the thing is, the Congress is saying that Vande Mataram is being used to almost test their patriotism. हर चीज पे जो है आप उनका एक पेट्रियोटिज्म का टेस्ट करने लगते हैं कि अगर आपने ये नहीं गाया है तो दिस मींस दैट वी आर नॉट नेशनलिस्टिक, वी आर नॉट पेट्रियोटिक.
10: पॉइंट, बट द थिंग इज दैट वंदे मातरम एज पर ऋषि अरबिंदो इट इज नॉट ओनली अ सॉन्ग, इट इज इट्स अ रिलीजन ऑफ पेट्रियोटिज्म. इफ कांग्रेस थिंक्स दैट दे आर अबव ऑल दीस, then I have nothing to say about the Congress, because Congress claims that they can have their abridged version of Vande Mataram, because they think that Vande Mataram is their own right. They can do whatever they want with Vande Mataram. I was shocked by their behavior, in spite of the law of the land says that while Vande Mataram is being sung, one has to give the respect as the national anthem is being given. So I wrote this letter to Madam Sonia Gandhi.
6: But what did you make of the entire episode that took place on the 15th of August? You know, was there hesitation? Was there discomfort? Because you've described it at length in your letter.
10: It was not hesitation. It was a purposeful act. It was purposely done just to show disrespect. Just to show whatever BJP is doing, they are against it. Just to show that they are above all the laws, because Congress feels the Bharat is their fiefdom.
6: Okay, Bharat is their fiefdom. Let me put that question now to Hussain Dalwai of the Congress, who also joins us. Mr. Dalwai, BJP कह रही है कि आपको लगता है, Congress को लगता है कि भारत उनका एक fiefdom है, इसीलिए जानबूझकर वंदे मातरम को disrespect किया जा रहा है. जब एक कानून आ गया है तो कानून के तहत सारे छंद गाए जाने चाहिए. ऑल ऑफ देम शुड बी सांग.
7: मेरे ख्याल से इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत गैर समझ है. ऐसा है, ये बंकिम चंद्र जी ने जो आनंद मठ नाम की नावेल लिखी थी वो 1882 को प्रसिद्ध हो गई. 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वो गाया गया था, लेकिन उसमें रविंद्रनाथ जी ठाकुर साहब ने ये कहा था, ठाकुर साहब ने, कि इसके दो स्टांजाज ही गाइए. ये पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये छः स्टांजाज हैं, लेकिन छः स्टांजाज में से दो स्टांजाज संस्कृत में है, आगे के स्टांजा जो है वो इसमें है बंगाली में है, और दो स्टांजा ये सुजलाम सुफलाम, ये देश कैसा सुजलाम सुफलाम है, इसके बारे में संस्कृत में वो गाया गया है और वही अडॉप्ट किया गया था ये देखिए। और 1950 में जब इसके बारे में इसमें बहस हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस वक्त वो 1950 में ये नेशनल सॉन्ग करके स्वीकारा गया, नेशनल एंथम करके नहीं, लेकिन उसका स्टेटस वही था और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन दो स्टैंडर्ड्स ही स्वीकारे गए थे।
6: पर सर, और वो जब आज के कानून
7: पारित हुआ उस वक्त जरा सुनिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें थे, उन्होंने भी मान्य किया, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उसके बाद वाजपेयी साहब का सरकार आया, उन्होंने भी मान्य किया, वो सब लोग मान्य करते थे। एक बात मैं बोलता हूँ कि आज इतने बड़े पैमाने पे ये सारे वंदे मातरम की बातें करते हैं, मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वंदे मातरम की घोषणा देके नारा देके लोग जेल में जाते थे, पुलिस के पटके खाते थे, लाठी खाते थे, गोलियां खाते थे और जेल में जाते थे। मौलाना आजाद भी वैसे ही गए, खान अब्दुल गफ्फर खान भी
6: आप सही कह रहे हैं दलदाई साहब,
7: सारे मुसलमान जो गए वैसे ही गए।
6: हम इतिहास को डिस्कस कर चुके हैं, 2026 में अगर कानून आया है क्या हर किसी को वो कानून मानना चाहिए? और वंदे मातरम को मैं एक एज अ फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि उसको पूरे छह अगर छंद गा लिए जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
7: ऐसा
6: उसके छह स्टैंजा गा के बिगड़ क्या जाएगा?
7: इसकी थर्ड ये देखिए, उसकी ठीक ढंग से चर्चा नहीं हुई, कानून गड़बड़ी में पास किया गया, ठीक ढंग से उसकी चर्चा नहीं हो गई थी, वो पूरी चर्चा होनी चाहिए थे और उसके बाद पास करेंगे तो मैं ये कहूंगा।
6: ये तो टेक्निकलिटी है,
7: वो बोल सकते हैं,
6: ये आप टेक्निकलिटी कर रहे हैं। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं,
7: मेरा सुनने वाले होंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपकी ये जो आदत है ना, बिल्कुल गलत बात है।
6: मेरा
7: सुनिए, आप कौन लगते हैं ऐसे इस तरह से बातें करने वाले? मुझे बुलाया है ना, मुझे बुलाया तो ठीक ढंग से बात करो, पहले मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। आप चमचेगिरी सरकार की मत करो, मुझे बोलने दो।
6: सरकार की बात नहीं है ये, राष्ट्रगान की
7: है कि इसमें ये, अरे राष्ट्रगान है, हम भी मानते हैं। ये देखिए, मैं हुसैन दलवाई हूँ, मैं गणपति के उत्सव में जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल ही नहीं, ये इस देश के सेक्युलरिज्म का सवाल है, ये आप लोग जानते ही नहीं। ये सेक्युलरिज्म खलास करना चाहते हैं, ये जो इसराइल में जो राज है ना, वैसा राज यहाँ चलाना चाहते हैं।
6: पर वंदे मातरम पूरा गाने से सेक्युलरिज्म कैसे खत्म हो जाएगा?
7: हिटलर चाहिए चाहिए
6: सेक्युलरिज्म कैसे खतरे में आएगा वंदे मातरम अगर पूरा
7: सवाल ही खत्म हो जाएगा?
6: कैसे
7: सवाल ही नहीं, हर बात में ये हो रहा है मैडम, हर बात में जो चला है ना हिंदुत्व, इसका मतलब ऐसा है दे वांट टू स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
6: हाउ?
7: ये उनके दिमाग में है।
6: व्हाट इन द वंदे मातरम
7: गुरुजी बोले हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, गोलवलकर गुरुजी बोले हैं। वो गोलवलकर गुरुजी को बोलते हैं कि ये गलत था, ऐसा बोल रहे हैं क्या?
6: सर लेट्स लीव असाइड गोलवलकर फॉर अ सेकंड, आई विल आस्क यू वेरी डायरेक्टली, यू सेड दे वांट टू अटैक सेक्युलरिज्म,
7: गलत बात है।
6: व्हाट इन वंदे मातरम पुट सेक्युलरिज्म एट रिस्क?
7: ये देखिए, वंदे मातरम की दो स्टांजा जो संस्कृत में आए हैं उसमें सुजलाम सुफलाम इस देश के निसर्ग की और इस देश की बड़ी तारीफ की गई है। आगे के चार जो हैं उसमें हिंदू देव देवता हैं, इसलिए टैगोर साहब ने कहा कि ये दो स्टांजा जी लीजिए, बाकी का मत लीजिए। मेरा ये कहना नहीं कि आज क्या करने का, मेरा कहना ऐसा है कि जिनको ये देश हिंदुत्ववादी बनाना है इसलिए जानबूझ के लाया गया है, दूसरी कोई बात नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल नहीं, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ की बात है, ये बात जरा ध्यान में लीजिए। ये सेक्युलरिज्म मानते हैं क्या? आप इनको क्यों नहीं पूछते क्या आप सेक्युलरिज्म मानते?
6: पूछ लेते हैं। सौमित्र चटर्जी इज अ डिसेंडेंट,
7: वो
6: सौमित्र चटर्जी इज अ बंकिम, इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। मिस्टर चटर्जी, लिसन टू मिस्टर दलवाई, ही इज सेइंग वो गणपति में जाते हैं बट डोंट ट्राई एंड इम्पोज हिंदुत्व आइडियाज थ्रू वंदे मातरम ऑन हिम और एनीवन एल्स.
10: That is the way he is talking. It shows how Congress thinks that India is a fiefdom. The way he is establishing his ideas, he is still thinking that India is their fiefdom. And more and more, he is talking of secularism. When the constitution was made, was there the term secularism in the preamble? He is talking of the constituent assembly, everything. Was the term secularism was in the preamble? I put the question to him.
6: Mr. Dalvai, please respond and we will cut to the big windows and come to Pradeep Bhandari also then. Mr. Dalvai.
7: ऐसा है प्रियम्बल में है कि नहीं ये सवाल नहीं. पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है और उसको सेक्युलर और समाजवादी ये बातें डाली गई है वो मान्य की गई है. सब लोगों ने मान्य किया था उसको. भाजपा ने विरोध नहीं किया था. ध्यान में रखो ये. अभी इस तरह का सवाल उठाना भी गलत है. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है. बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार ये कहा है. अभी सेक्युलरिज्म के खिलाफ के जो लोग हैं वो जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं. दे वांट टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सब चला है.
6: प्रदीप भंडारी ये तो हो गया ना गड़े मुर्दे उखाड़ना. द क्वेश्चन व्हिच हैड बीन सेटल्ड फॉर डेकेड्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लेम पैशंस नाउ.
11: मैडम सेट डेकेड्स तक तो ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा भी फहरा देना चाहिए. आर्टिकल 370 भी रहना चाहिए सेक्युलरिज्म के नाम पे. इसका मतलब थोड़ी अन्याय होने देंगे. पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे इन्हें झूठ बोला. उन्होंने दो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं किए थे. दूसरा पद्मजा लेट्स टेक देयर आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड. इन्होंने बोला कि भाई ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है. मैं आर्मी के वॉर क्राय पढ़ना चाहता हूं. गोरखा राइफल्स का वॉर क्राय है जय महाकाली आयो गोरखाली. क्या ये कह रहे हैं कि आर्मी भी कम्युनल है? हुसैन दलवाई तो ये भी कहेंगे आर्मी भी कम्युनल है. दूसरी रेजिमेंट लेते हैं राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय. क्या इनके हिसाब से जो मुसलमान आर्मी के अंदर जा रहा है वो कम्युनल मुसलमान है? आर्मी के वॉर क्राय के अंदर देश की संस्कृति है. अगर ये हुसैन दलवाई की जिन्ने वाले माइंडसेट को आगे लेके जाए तो बोलेंगे आर्मी के अंदर भी जो ये क्राय चल रहा है वो भी मुसलमान वाला मुसलमानों के खिलाफ है. ये जिन्ना वाली सोच है. वंदे मातरम वो संग बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन 1905. रहमतुल्ला सहवानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1896. वॉज ही अ कम्युनल मुस्लिम एज पर हिम? वॉज बाल गंगाधर कम्युनल? वॉज रविंद्रनाथ ठाकुर हु सैंग द एंटायर वंदे मातरम इन 1896 कम्युनल? इट वॉज प्रिसाइसली नेहरू इन 1937 हु सकम्ब्ड टू जिन्नाह प्रेशर and who agreed to partition of the
6: but
11: country.
6: But Rabindranath Tagore agreed to it. When Nehruji spoke to Rabindranath Tagore,
11: Nehru
6: he agreed.
11: Because Nehru prevailed. With that logic, even temporarily, there was Article 370 which other freedom members of the Constituent Assembly had to agree as temporary. But these people made it as permanent. And it was Shyama Prasad Mukherjee who opposed it. Something which is a historical wrong has to be corrected because the spirit of the Indian Constitution is entire Vande Mataram. What is Hindu Muslim and Vande Mataram? And if it is Hindu Muslim, are the war cries of army also Hindu Muslim?
6: Mr.
7: ऐसा ये गलत बातें कहते हैं. एक तो ध्यान में रखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब पास हुई तो वंदे मातरम के दो स्टैंजास ही उसमें
11: आप उनका दिखा दो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला दो स्टैंजास होने चाहिए
7: की आदत है. बार
11: मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं दिलवाई साहब.
7: उनका झूठ सही
11: दिलवाई साहब कोट कर दो.
7: एक तरह से एक आर्मी का आदमी
11: दिलवाई साहब कोट कर दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को. मैंने कोट कर दूंगा.
7: ये नेशनल सॉन्ग क्या है इसमें फर्क नहीं इनको मालूम.
11: अरे दलवाई साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं. नेहरू का कोट है
7: पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकता है.
11: अरे
7: वो अलग बात है.
11: वॉर क्राय आर्मी का उसमें भी कम्युनल है क्या?
7: अल्लाह अकबर बोल के भी कासिम का
11: ना ना ना ना ना अल्लाह अकबर कोई भारत की सेना का वॉर क्राय नहीं है. सिर्फ पाकिस्तान की सेना का है. आप अपने घर पर अल्लाह अकबर बोल इबादत करते हुए. आर्मी का वॉर क्राय अल्लाह अकबर नहीं है. पाकिस्तान की आर्मी का वॉर क्राय अल्लाह अकबर है. मैंने वॉर क्राय बताया. वापस से बोलता हूँ राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय. क्या मुसलमानों को बोलोगे कि हिंदुस्तान की आर्मी में नहीं है आपके साथ से? व्हाट इज ही सेइंग? No, let's take that argument forward.
6: Let him reply. Let him reply. Mr. Dalvai, about the war cry of the Indian Army.
11: That is also with that logic.
6: Go on, Dalvai Saab. About the war cry of the Indian Army, when any soldier chants Bajrang Bali ki Jai or they invoke Durga Mata on the war scene.
7: Indian Army ki baat alag. मैं लड़ाई करने के लिए जाता हूँ तो क्या नारा देता हूँ ये अलग बात है.
2: अरे वो वॉर क्राइम क्या बात कर रहे हैं, वंदे मातरम में क्या अलग हो गया?
12: ये दो बातें इकट्ठा लाना बिल्कुल गलत बात है
2: दलवाई साहब। वंदे मातरम पूरे गाने में क्या एंटी मुस्लिम,
12: अल्लाह अकबर बोल के भी हल्ला कर सकता है, ये इनका ये इनके दिमाग।
2: अरे वो अल्लाह अकबर करके जो हमला करते हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, आप उसको छोड़ो, आप उस पर मत जाओ। व्हाट इज एंटी मुस्लिम एंटायर वंदे मातरम?
12: ये इनके इनके दिमाग में हिंदुत्व,
2: आपके दिमाग में जितना गुस्सा हुआ है हमारे दिमाग में संविधान है,
12: दिमाग में सनातन धर्म की बात है, इनके दिमाग में सनातन धर्म की बात है, हिंदू धर्म।
2: सनातन धर्म तो भारत के संविधान का एसेंस है, बाबा साहब अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लो,
12: जिसका इन्होंने जिसका इन्होंने खून किया ना, वो गांधी जी हिंदू थे, वो हमारे नेता थे, वो हमें आज भी गांधी जी का नाम हम सर झुका के करते हैं लेते हैं।
6: ओके, लेट मी ब्रिंग इन सुमित्रा चैटर्जी बैक इन एंड आई विल आल्सो ब्रिंग इन विवेक बंसल ऑन दिस। सुमित्रा चैटर्जी, मिस्टर दलवाई इज आर्ग्यूइंग ओवर हियर दैट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ हिंदुत्व इन द अदर स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मिस्टर चैटर्जी, he says that there is a spirit of Hindutva and there's an imposition of Hindutva.
10: That is their prerogative to define Vande Mataram as per their way. But if you are an Indian, you have to accept Vande Mataram in all six stanzas. First. Second, Vande Mataram is not the spirit of Hindutva. Vande Mataram is the spirit of patriotism. That is the problem with the Congress Party. They always mix up patriotism with communal feelings. They are doing it purposefully for keeping their vote bank intact. They are afraid to call a spade a spade. They are afraid to accept Vande Mataram as a national song in all six stanzas.
6: Mr. Bansal, is the Congress confusing Hindutva, no, patriotism, no, all of
13: no,
6: these
13: no,
6: ideas?
13: No. Let me make my stand very clear on this. Whatever the controversy, it's digressing that. The basic thing, I think it started on the fact that in the Congress Party's function on the 15th August. First of all, let's go into the history. We all talked about history and all. That how this Vande Mataram was sung in the 1896 first time for the session, and it played a pivotal role during the partition of Bengal way back in 1905. But at the same time, we have to keep this in mind. In 1937, it was decided that two stanzas of it would be sung.
6: But and sir, we have discussed history enough.
13: I beseech you to
6: please come back to 2026. Let me just ask you a straight question.
13: I'm coming back to that. I'm coming back. Let me just, because you asked me to chip in at the last moment, so I have to come back, come with my, all these things. So in the entire Vande Mataram is to be sung in government institutions, as a customary in Congress functions and all. Only two stanzas are being sung. So unnecessarily, they are, because they don't have anything, you know, the sort of patriotism which they wears on their sleeves. Somebody said that patriotism happens to be the last refuge of the scoundrel. Sorry to say, but this is what had been said, and exactly this is being done, you know.
6: Are we attacking the idea of patriotism itself? Only scoundrels take refuge beyond patriotism.
13: I said the sort of patriotism which they are wearing on their sleeves. That's what I said.
6: Okay, answer the technicality, Pradeep Bhandari, that in a private Congress function, what happened on the 15th of August was a private Congress function. What Mallikarjun Kharge was at in Goa was a private Congress function, and they don't need to sing the full national song there.
2: Well, they are Dimagi Naxal ecosystem, guys. They are self-exposing themselves. But 10 seconds, we don't need lectures from Mr. Dalwai, because Mr. Dalwai is one of the men who was propounders of Hindu terror. That is just, I want to state on record. I'll come to that. Ms. Vivek ji is saying that Sonia Gandhi lied then. So for 24 hours after Sonia's video, Jairam Ramesh was saying, हमने तो पूरा वंदे मातरम गाया, वहां पे कुर्सी देखने के लिए कर रहे थे।
11: Now you have Mr. Kharge who's saying we will not sing more than two stanzas.
6: They are so not required to. They are not required.
11: No, he even said that I will not sing and I did not. He did not sing and he said हम नहीं कहेंगे. तो क्या Sonia Gandhi was lying, right? So Sonia Gandhi, as per Congress, interrupted Vande Mataram because it was sung in entirety. The Congress has accepted that it was fooling the people of the country. So Sonia Gandhi consciously lied. Can you just get that
14: respect for the first Nobel laureate of this country, Mr. Rabindranath Tagore, who with whose consent this all was?
11: He all was the guy. He was the same person who sang that in entirety in 1896. Sir, we have passed it to the parliament of the country. If Gurudev Rabindranath Tagore was alive today, he would also follow the law of the land. Anybody irrespective of political ideology has to follow the law of the land. And you cannot be a patriot to not sing Vande Mataram.
14: That is
11: what is your issue with Vande Mataram and Jan Gan Man?

0: Jawaharlal Nehru, this was decided that first two stanzas would be sung by as a national song. So why unnecessarily? And moreover, as in Congress office, traditionally two stanzas were sung. So that was the thing. Unnecessarily that we are, Sonia ji is objected to it. Definitely, this family has a tradition. This family has done the, have passed through all the tests of nationalism and patriotism. So to question their patriotism or heckle them for what is their love for the nation, please. And these people don't have to show us. Mr. Chatterjee,
1: don't question other people's patriotism.
0: Power is secondary. For power, for us, like Gandhi said, power is a means for an end.
1: Pradeep Bhandari, don't question patriotism.
2: I will. I don't need to. They are self-exposed. Their version of patriotism is Binayak Sen, who was the National Advisory Council member advising Sonia Gandhi, who was convicted of sedition. I'll not go there. Their patriotism is when they did not attack Pakistan after 26/11. But I'll come to the fundamental point, Padmaja. There are only two things which are possible. A, that if you believe in the Constitution of India, if the Congress believes so, they have to follow a law which is passed by the Parliament of the country. B, any patriot across geographies, how will he look at Hindu-Muslim from the lens of Vande Mataram? Only those who have the Muslim League mindset can do so, because Vande Mataram in entirety has been sung in the past by our freedom fighters. And please note, just because something has been going on for 60-70 years does not mean it is correct. As I said and reiterated, UCC was not implemented for 60-70 years does not mean that the Constitution did not abide by it. 51A spoke about respect to national anthem and national song at the same time. Congress did not abide by it. There was no abrogation of 370. A terrorist was called as G. Terrorists were eulogized. Just because Congress did it for 70 years does not mean that it was the spirit of the Constitution. And just because Nehru succumbed in 1937 to Jinnah and led to partition and led to truncation of Vande Mataram does not mean it was correct.
1: Okay, Mr. Dalwai wants to respond.
3: ऐसा ये देखिए, ये सवाल अभी क्यों आया है? इसका सोच करना चाहिए. मैं ये बोलूँगा, अगर पूरा वंदे मातरम कहाँ गाया जाता है और वहाँ मैं हूँ, I will respectfully hear it. I won't object that. लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, तोरा मुझे बोलने अब दो. अब ये अभी क्यों लाया गया है? अभी ये जो एंटी गवर्नमेंट वातावरण जो हो रहा है ना, ये जो स्टूडेंट्स ने जो वातावरण किया है, राहुल गांधी ने जो वातावरण किया है
2: झारखंड में,
3: इससे सरकार डर गई है और दरार करने के लिए लाया गया है. क्योंकि ब्रिटिश
2: एक वंदे मातरम जो देशभक्ति की बात है, जिसको देशभक्ति दरार देखे, जिसको शर्जील में इमाम यूनाइट देखे, उसका भगवान भी मालिक नहीं है.
3: इनका
2: आप ना अपना जहर अंदर का एक्सपोज कर रहे हो. वंदे मातरम को अगर आप जो है दरार डालने वाला कह रहे हो,
3: दलाली
2: लगता है आपकी मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता और शर्जील इमाम की मानसिकता में कोई फर्क नहीं.
3: कैसी मानेंगे उनकी बातें?
2: अरे मत मानो ना आप, तभी तो आप मुस्लिम लीग वाली कांग्रेस हो.
3: वंदे मातरम बोल के जो भाग रहे थे,
2: अरे भाई वंदे मातरम हमने बोला, आप तो छोड़ो, आपके जवाहरलाल नेहरू ने 37 में जाके बेड़ा गर्क कर दिया, जिससे देश का पार्टीशन हो गया, वरना जाके यूनाइटेड भारत होता. आप तो भूल ही जाओ, मेडविना माउंटबेटन से लेके जहां तक शुरू करूंगा, छोड़ो. अभी ये पार्लियामेंट ने पास किया, आपको कानून को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप पार्लियामेंट और देश के संविधान में विश्वास रखते हो. वरना एक फालतू कॉपी जो दिखाते हो ना, अपने आप एक्सपोज होते हो.
3: कमाल है साहब, जरा जरा जरा हिस्ट्री.
2: अरे सर, मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मैंने मदरसा में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी है.
1: लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल.
2: पहले मैंने जनरल बोला, इसमें क्या फैक्ट है? मैंने मदरसा में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी, इसमें क्या पर्सनल है
3: यार? उनका तो,
2: अरे मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी, व्हाट इज पर्सनल इन दैट?
1: ओके, वन एट अ टाइम, लेट हिम स्पीक.
3: कहां थे? मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में थे.
2: गलत है, कृषा प्रजक पार्टी के साथ अलायंस किया था, मुस्लिम लीग के साथ कोई अलायंस नहीं किया था. क्यों झूठ बोल रहे हो यार?
1: बट हुसैन दलवाई साहब, जहां तक आपका ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि अभी जेन जी के आंदोलन की वजह से इसको लाया गया है, आपको याद होगा कि पहली बार ये पिछले साल इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया था अबाउट व्हाई वंदे मातरम वाज ट्रंकेटेड. सो दैट आर्ग्यूमेंट डजंट रियली होल्ड. वंदे मातरम द इशू हैजंट बीन टेकन अप इन द लास्ट वन मंथ. ये पूरा एजिटेशन तो एक दो महीने का ही है ना, और वंदे मातरम उससे बहुत पहले है. इन कंक्लूजन, आई वॉन्ट टू गिव द लास्ट वर्ड टू सुमित्रो चैटर्जी. What do you make of this entire controversy? Do you think it is going to die down? Or are we now going to see a case of your Vande Mataram versus my Vande Mataram? And in that, I want to quote from the letter

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: प्योर शाही पनीर।

0: The convenience is really the whole story. Please consider these facts tonight. The government of India's data says potholes cause on an average 75 accidents and kill just under 50 people in Maharashtra every single year. So tonight, this isn't Marathi versus non-Marathi. It is about totally misplaced priorities of our governments. Language politics generates headlines, applause, and political mileage. Filling potholes is boring, invisible, governance. Until an 11-year-old called Rishabh Patole falls under a truck. Maybe government needs to spend less energy policing the language of the person driving you and much more energy making sure the road beneath you doesn't end your life. And on this very, very tragic day, I'm joined live by Sandeep Patole, the father of little Rishabh, who lost his life in that accident. Sandeep ji, sabse pehle, Rishabh ke jaane ka hame behad dukh hai. Is waqt aapse baat karna bhi bahut mushkil hoga, lekin agar Sandeep ji, aap bata sakte hain, us din aakhir hua kya tha?
1: Yes, so मैं संदीप पाटोले एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अभी इंजोड़ी में विप्रो कंपनी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं इधर रहता हूँ. तो मैं एज ए रेगुलर रूटीन कल भी उसी तरह अपनी बेटी और बेटे को लेके ट्यूशंस के लिए 6 बजे के आसपास, जो कि भद्रेशील साइड में है, भद्रेशील साइड एक प्रोजेक्ट है भद्रेश का, उधर जा रहा था. तो जैसे ये घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास. तो मैं कल भी उसी तरह जा रहा था 6 बजे अपने बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने के लिए. उस टाइम एक मैं लगभग 10-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैं एक साइड से जा रहा था तो बीच में ही एक खराब रोड और गड्ढे की वजह से एक टेम्पो, जो आयशर टेम्पो है, वो मेरे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गया और उसने थोड़ा सा टिल्ट किया और मेरी तरफ उसने टर्न मारा. तो गड्ढे की वजह से उसका टेम्पो वाइबल हुआ और वो सीधा मेरे बेटे को मेरे बेटे के दिमाग पे इधर थोड़ा सा एकदम सा धक्का लग गया और मेरी बाइक स्किड हो गई वहां पे. और हम तीनों भी, मतलब मैं, मेरी बेटी और बेटा, तीनों भी बाइक स्किड होके गिर गए और उसी में उसको बहुत नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा था. तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने खुद को सवार लिया, मुझे भी थोड़ा लगा है, लेकिन मैंने देखा कि उसको बहुत सारा खून आ रहा है. तो मैंने उसको बाजू में लेके आया, उठाया और फिर हेल्प के लिए पुकार रहा था. तो एक दो लोगों ने आके उसको गाड़ी निकाली और मेरे को आगे लेके गए साइड में. और उसके बाद उन्होंने मैं चिल्लाता रहा कि इट्स मींस ब्लडिंग बहुत हो रहा है, तो उसको कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कोई तो हेल्प करो. तो मैं लगभग 3-4 मिनट यही करता रहा था, लेकिन अफसोस की कोई भी आगे नहीं आ रहा था. लेकिन लास्ट में एक जो कि क्या वाला रहता है, ओला या उबर वाला, तो पता नहीं कौन सा था, बट उसने इंसानियत के नाते वहां पे कैब ला के खड़े कर दिए, बोलो कि इसमें डालो और लेके चलते. तब तक पेट्रोलिंग करने वाले जो दो पुलिस के कर्मचारी थे वो उधर आ गए और हमने तीनों ने मिला के उसको, हम तीनों भी उसमें बैठ गए कैब में और उन्होंने हमें आगे, वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आगे चलते उनको रास्ता तैयार करके मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए. लेकिन उसमें लगभग 20 से 25 मिनट, लगभग 15-20 मिनट के आसपास उतना टाइम तो चला गया और उसका बहुत स्वेलिंग हो रहा था. मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था. तो उसका वो ये खो गया था, उसका बेहोश हो गया था. तो बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया और डॉक्टर ने उन्होंने अपना CPR वगैरह ट्रीटमेंट चालू कर दी. लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई हम उसका बहुत सारा ये हो गया, हार्ट का रेट लगभग पहले से ही वो उसका हार्ट बंद पड़ पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसे 15-20 मिनट के बाद और कोशिश करके उन्होंने लास्ट में मेरे बेटे को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया. तो एक अनहोनी मेरे साथ जो हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो रोड है और जो गड्ढे है, मतलब पुणे में ही नहीं बल्कि सब जगह यही हाल है. और ऐसा है कि गड्ढे भरते हैं तो 5 दिन में उसका उसमें कुछ मिट्टी ही मिला देते हैं लगभग, तो कुछ भी नहीं है. और बहुत सारे गड्ढे, अगर आपको देखना है तो आप अभी जाके देख सकते हो रोड की हालत क्या है, कितने गड्ढे है. एक तरफ का तो बंद ही है एक तरफ में, और वो इंजोड़ी का IT ट्रैफिक है जो उधर से जाता है, जो फेज 1 फेज 2 की तरफ, फेज 3 की तरफ जाता है. रोज का हाल है, और कोई रोज 12-15 दिन महीने में एक दिन

0: मेरे को तो सहानुभूति देने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो बेटा उसने लॉस हुआ है वो कौन भर के दे सकता है क्या? तो मेरा ये सवाल है आपसे कि प्रशासन और जो भी शासन है उनसे कि भाई आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर दीजिए कि जो अच्छे रोड्स हो, अच्छा जो कि पॉलिटिकल रूल्स फॉलो करे और जो भी जिनके लिए रूल्स लगाए वो भी फॉलो करे, तो कुछ ना कुछ जाके बाकी के लोगों को तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया लेकिन बाकी के लोगों की तो बच सकती है, क्योंकि ये बात आज से आप भी अगर देखते हो तो बहुत बार बार बार बार होते ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पर कंट्रोल हो सके। और
1: संदीप जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि गणेश पूजा से पहले सड़कों के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। ऋषभ के साथ जो हुआ उसके बाद आप इस वादे को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि सितंबर 14 के अंदर अंदर सारे गड्ढे को रिपेयर किए जाएंगे।
0: देखिए वो जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है तो उनका तो डेडलाइन रहा होगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं मतलब अभी तो मेरे बेटे की जान चली गई है, तो एटलीस्ट गड्ढे भरे होते ठीक तरह से काम किया होता ठेकेदारों ने या भी जो भी करने वाले इनके अंडर आता है, तो उधर का एक प्रॉब्लम है कि ये रोड करेगा कौन, एक एमआईडी कोई बोलता है कि एमआईडीसी के अंदर है तो एमआईडीसी वाले करेंगे और दूसरे बोलते हैं कि ये इसके पीएमआरडी में आता है तो पीएमआरडी वाले करेंगे, तो उनको ही पता नहीं कि कौन कर रहा है कौन मालिक है। और आप अगर उधर जाकर देखोगे तो इतनी सारी बड़ी सोसाइटीज है, गोदरेज है, वीडीपी है, बहुत सारे सोसाइटीज है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट लिया है, वो बहुत सारा टैक्स भी भरते है, लेकिन उनके बावजूद उनको सिर्फ गड्ढे पानी और उसकी वजह से मच्छर और यही यही रोज का हाल है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से या जो भी वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उनसे अपील है कि भाई आप एक कुछ ना कुछ तो एक सेंटर पॉइंट निकाल के कुछ ये जल्दी कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को आम लोगों को तकलीफ ना मिले और वो अपना डेली रूटीन है वो ठीक तरह से निभा पाए या फिर ऑफिस या जब भी किसी मार्केट या किसी के किसी भी चीज के लिए उसे जाना आना हो तो वो ठीक तरह से कर पाए।
1: हम एनडीटीवी की तरफ से फिर से हम बताते हैं आपको संदीप जी कि हम सवाल पूछते रहेंगे इस मुद्दे पर और हम रिपोर्ट करते रहेंगे जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉट होल्स जो है, हम सवाल करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे,

0: तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power, NDTV Anviksha.

0: पर्सनलाइज।
1: 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं?
2: भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं।
3: और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं।
0: The stress of the agriculture sector and its removal has been one of the cornerstones of the Prime Minister's policies, something he has been striving towards eradicating right from the word go.
1: आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा?
2: इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे।

0: अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
1: A nation is strong when its economy is strengthened right down to its most basic participants. In this, the Prime Minister's stand has been towards pushing for self-confidence and self-reliant innovation amongst the young entrepreneurs of India.
0: ये स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा सरकम है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
1: पुशिंग फॉर हाई एंड सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी, 12 years of advancement has built a solid foundation for India at the helm of enterprise.
2: Electrical se lekar ke electronics tak, from make in India, chemicals se lekar ke pharmaceutical tak, from make in India, automobile se lekar ke agro value addition tak, from make in India, paper ho ya plastic, from make in India, सम सैटेलाइट हो या सम मरीन, सम मेक इन इंडिया।
0: इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करें। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।
3: एक जमाना हमने देखा है, 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना।

0: बड़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए।
1: Security is beyond compromise, and the Prime Minister has been very clear in his attitude towards how the scourge of Naxalism should be handled. He has always made it a point to thank the forces that defended the nation from homegrown extremism.
2: और मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से, खास करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान वापिस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद देश को रक्त से रंजित कर रहा है। आए दिन हिंसा की वारदातें करना, भाग जाना, जंगलों में छिप जाना, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, विकास की नई नई योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों के कारण जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 126 जिलों में मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो कम होकर के करीब करीब 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, माओवाद की चंगुल में

0: विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
1: 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे।
2: यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है। रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है।
3: हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
4: आपने झारखंड के बाहर
5: Over the years, the Prime Minister's vocabulary has changed as his concerns and his concentration moved from access to aspiration. He had his mandate very clear in his mind as he saw himself evolve as well with the country. And perhaps that is also why the sweep of his Independence Day addresses have become a phenomenon in themselves.

0: new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
1: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
2: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
3: लगता आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नाही आहे. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी तो सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
4: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरी जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
2: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे हैं बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
5: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
6: लोग

0: your livelihood. The government says this is about passenger convenience and respect for Maharashtra's language. But is this really your priority when children like Rishabh are dying in potholes on your watch? Is your priority policing livelihoods, especially in a state where linguistic chauvinism has repeatedly spilled into intimidation and violence? You have to ask whether passenger convenience is really the whole story. Please consider these facts tonight. The government of India's data says potholes cause on an average 75 accidents and kill just under 50 people in Maharashtra every single year. So tonight, this isn't Marathi versus non-Marathi. It is about totally misplaced priorities of our governments. Language politics generates headlines, applause, and political mileage. Filling potholes is boring, invisible governance. Until an 11-year-old called Rishabh Patole falls under a truck. Maybe government needs to spend less energy policing the language of the person driving you and much more energy making sure the road beneath you doesn't end your life. And on this very, very tragic day, I'm joined live by Sandeep Patole, the father of little Rishabh who lost his life in that accident. Sandeep ji, sabse pehle, Rishabh ke jaane ka hame behad dukh hai. Is waqt aapse baat करना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर संदीप जी आप बता सकते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था?
1: Yes, so, मैं संदीप पाटोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं अभी इंजोड़ी में विप्रो कंपनी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूं जी. और पिछले 15 सालों से मैं इधर रहता हूं. तो मैं एज ए रेगुलर रूटीन कल भी उसी तरह अपनी बेटी और बेटे को लेके ट्यूशंस के लिए 6 बजे के आसपास, जो कि बद्रेशिल साइड में है, बद्रेशिल साइड एक प्रोजेक्ट है बद्रेश का, उधर जा रहा था. तो जैसे ये घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास. तो मैं कल भी उसी तरह जा रहा था 6 बजे अपने बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने के लिए. उस टाइम एक मैं लगभग 10-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था. लेकिन क्या हुआ कि मैं एक साइड से जा रहा था तो बीच में ही एक खराब रोड और गड्ढे की वजह से एक टेम्पो, जो आइशर टेम्पो है, वो मेरे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गया और उसने थोड़ा सा टिल्ट किया और मेरी तरफ उसने टर्न मारा. तो गड्ढे की वजह से उसका टेम्पो वाइबल हुआ और वो सीधा मेरे बेटे को मेरे बेटे के दिमाग पे इधर थोड़ा सा एकदम सा धक्का लग गया और मेरे बाइक स्किड हो गई वहां पे. और हम तीनों भी, मतलब मैं, मेरी बेटी और बेटा, तीनों भी बाइक स्किड होके गिर गए. और उसी में उसको बहुत नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा था. तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने खुद को सवार लिया, मुझे भी थोड़ा लगा है, लेकिन मैंने देखा कि उसको बहुत सारा खून आ रहा है. तो मैंने उसको बाजू में लेके आया, उठाया और फिर हेल्प के लिए पुकार रहा था. तो एक दो लोगों ने आके उसको गाड़ी निकाली और मेरे को आगे लेके गए साइड में. और उसके बाद उन्होंने, मैं चिल्लाता रहा कि इट्स मींस ब्लडिंग बहुत हो रहा है, तो उसको कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कोई तो हेल्प करो. तो मैं लगभग 3-4 मिनट यही करता रहा, लेकिन अफसोस की कोई भी आगे नहीं आ रहा था. लेकिन लास्ट में एक जो कि क्या वाला रहता है, ओला या उबर वाला, तो पता नहीं कौन सा था, बट उसने इंसानियत के नाते वहां पे क्या ला के खड़े कर दिए, पूरे पीस में डालो और लेके चलते. तब तक पेट्रोलिंग करने वाले जो दो पुलिस के कर्मचारी थे वो उधर आ गए और हमने तीनों ने मिला के उसको, हम तीनों भी उसमें बैठ गए कैब में. और उन्होंने हमें आगे, वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आगे चलते उनको रास्ता तैयार करके मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए. लेकिन उसमें लगभग 20 से 25 मिनट, लगभग 15-20 मिनट के आसपास उतना टाइम तो चला गया. और उसका बहुत स्वेलिंग हो रहा था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था. तो उसका उसका बेहोश हो गया था. तो बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया और डॉक्टर ने उन्होंने अपना CPR वगैरह वो ट्रीटमेंट चालू कर दी. लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई हम उसका बहुत सारा ये हो गया, हार्ट का रेट लगभग पहले से ही उसका हाथ बंद पड़ गया है, हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसे 15-20 मिनट के बाद और कोशिश करके उन्होंने लास्ट में मेरे बेटे को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया. तो ये अनहोनी मेरे साथ जो हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो रोड है और जो गड्ढे हैं, मतलब पुणे में ही नहीं बल्कि सब जगह यही हाल है. और ऐसा है कि

0: भरते हैं तो 5 दिन में उसका उसमें कुछ मिट्टी मिट्टी मिला देते हैं लगभग, तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे गड्ढे अगर आपको देखना है तो आप अभी जाके देख सकते हो रोड की हालत क्या है, कितने गड्ढे, एक तरफ का तो बंद ही है एक तरफ में। और वो इंजोड़ी का आईटी ट्रैफिक है जो उधर से जाता है, जो फेज वन फेज टू की तरफ फेज थ्री की तरफ जाता है, तो रोज का हाल है। और कोई रोज 12-15 दिन महीने में एक दिन ऐसा इंसिडेंट होते रहता है जो कि बहुत सारे लोडिंग व्हीकल जो रहते हैं जिसको अलाउड नहीं है उस टाइम में, वो भी उधर दिन रात उनका चालू रहता है, जो कि टैंकर्स हो, डिपर हो, डंपर हो, या फिर और कोई जो नाव व्हीकल्स है वो हमेशा चालू रहते हैं। इसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कब जाके वो जगने वाले हैं, कब जाके वो जो भी रूल्स है रेगुलेशन से लाने वाले हैं। और आम तो ये मेरा ये मतलब अभी मेरे को तो सहानुभूति देने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो बेटा उसने लॉस हुआ है वो कौन भर के दे सकता है? तो मेरा ये सवाल है आपसे कि प्रशासन और जो भी शासन है उनसे कि भाई आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर दीजिए कि जो अच्छे रोड्स हो, अच्छा जो कि पॉलिटिक रूल्स फॉलो करे, और जो भी जिनके लिए रूल्स लगाए वो भी फॉलो करे, तो कुछ ना कुछ जाके बाकी के लोगों को, तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया लेकिन बाकी के लोगों की तो बच सकती है। क्योंकि ये बात आज से आप भी अगर देखते हो तो बहुत बार बार बार बार होते ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पर कंट्रोल हो सके। और
1: संदीप जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि गणेश पूजा से पहले सड़कों के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। ऋषभ के साथ जो हुआ उसके बाद आप इस वादे को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि सितंबर 14 के अंदर अंदर सारे गड्ढे को रिपेयर किए जाएंगे।
0: देखिए वो जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है तो उनका तो डेडलाइन रहा होगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं मतलब अभी तो मेरे बेटे की जान चली गई है, तो एटलीस्ट गड्ढे भरे होते, ठीक तरह से काम किया होता ठेकेदारों ने या फिर जो भी करने वाले इनके अंडर आता है, तो उधर का एक प्रॉब्लम है कि ये रोड करेगा कौन? एक एमआईडीसी, कोई बोलता है कि एमआईडीसी के अंदर है तो एमआईडीसी वाले करेंगे, और दूसरे बोलते हैं कि ये इसके पीएमआरडी में आता है तो पीएमआरडी वाले करेंगे, तो उनको ही पता नहीं कि कौन कर रहा है कौन मालिक है। और आप अगर उधर जाकर देखोगे तो इतनी सारी बड़ी सोसाइटीज है, गोदरेज है, वीटीपी है, बहुत सारे सोसाइटीज है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट लिया है, वो बहुत सारा टैक्स भी भरते है, लेकिन उनके बावजूद उनको सिर्फ गड्ढे, पानी और उसकी वजह से मच्छर और यही यही रोज का हाल है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से या जो भी वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उनसे अपील है कि भाई आप एक कुछ ना कुछ तो एक सेंटर पॉइंट निकाल के कुछ ये जल्दी कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को, आम लोगों को तकलीफ ना मिले और वो अपना डेली रूटीन है वो ठीक तरह से निभा पाए, या फिर ऑफिस या जब भी किसी मार्केट या किसी के किसी भी चीज के लिए उसे जाना हो तो वो ठीक तरह से कर पाए।
1: हम एनडीटीवी की तरफ से फिर से हम बताते हैं आपको संदीप जी कि हम सवाल पूछते रहेंगे इस मुद्दे पर और हम रिपोर्ट करते रहेंगे। जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉट होल्स जो है, हम सवाल करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू।
2: Of engagement, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn. India is chasing years faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities. a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities. A new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities. A new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, Actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, Commerce, Security, Infrastructure, Tourism, Soft Power. NDTV Anviksha, Ideas.

0: Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: Ryan is with France.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a 1 month notice followed by 3 month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
8: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 165,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
9: लगता आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी तो सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
10: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
7: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
8: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे ही बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
11: Multiple accidents just yesterday. One 11-year-old child has passed away because of an accident
3: yet the government refuses to wake up. There is a protest called by all the local residents and employees here on

0: 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary.
1: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
2: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना जर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल. अशा प्रकारचा नियम मी काढला आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
3: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
4: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरी जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए वक्त देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
5: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से। नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे है बुझाने चाहिए और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है।
6: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September and we will wholeheartedly support that protest.
7: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो।
1: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adyala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
8: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adyala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A three-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adyala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his eyesight. Khan had developed a retinal condition affecting his right eye.
9: Sehat alhamdulillah theek hai, magar dil mein wo no bade gusse mein the, kehte hain ki hame ye mental torture kar rahe hain aur sara din kamre mein band, thoda sa bahar nikal sakte hain, koi kisi se communication nahi.
8: The issue is not just medical. It is also about how Khan has been kept inside the Adyala jail. Khan supporters have repeatedly alleged that he has been kept in isolation and has been subjected to mental and physical torture. Amid all of this, the Supreme Court's order represents a delicate balance. On the one side, Khan's constitutional right to health and medical care. On the other, the authorities' concerns over security, access and political mobilization. Bureau Report, NDTV.
1: And well, that's all that we could pack for you in this edition. Slipping into a very short break. Good night. See you tomorrow.

0: Welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. And as always, when it really matters, the buck stops here. It's the national song, but it seems that even over this, we can't forge a national consensus, making many wonder, will it now be a case of your Vande Mataram versus my Vande Mataram? Will the national song now also be held hostage to political partisanship? Consider this. For the third time in the last week, the Congress has found itself under scrutiny over the national song. First, the BJP accused Sonia Gandhi of attempting to halt the singing of Vande Mataram midway during an Independence Day event at the Congress headquarters. Then it emerged that the Congress government in Kerala had done away with the national song altogether at all Independence Day functions in the state. And finally on Monday, Congress Chief Mallikarjun Kharge did sing the national song in a Congress event in Goa, but only the first two stanzas. Under attack, the Congress's argument is very simple. This is the national song that was adopted in 1937. This is the song that was sung by freedom fighters, by leaders of the Congress, and that is the way it should remain. The BJP, though, is questioning the hesitation and calling the attempt to avoid or truncate the song a sign of disdain and of disrespect.
1: Complaint, wo kya file kari? Jo Mahatma Gandhi ji वंदे मातरम गाते वही में ही गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गया। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, जैसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं, अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर।
2: अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था, उनका कितना 57-58 है कितना, हाँ ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है, कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है, और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो
3: क्या औकात है अटैक करने की? वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, ये थे तब दूम दबा के या तो गायब हो गए थे या दूम हिला के अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, ये बोलेंगे वंदे मातरम पे? औकात है इनकी, आ जाए सामने डिबेट करें वंदे मातरम, हम बताते हैं इनको। तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी,

0: 1937 में प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के दोनों स्टेंजास को कांग्रेस कार्य समिति ने अडॉप्ट किया था और 1950 में संविधान सभा में यूनैनिमसली, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे, कांग्रेस ने उसी को, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने इन्हीं दो स्टेंजास को अडॉप्ट किया था।
1: कांग्रेस पार्टी के नेता, विशेष रूप से गांधी परिवार और गांधी परिवार की मिजाजपुर से करने वाले उनके सारे वरिष्ठ नेता, वो एक मानसिकता से ग्रसित हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, वो देश की कानून और व्यवस्था से ऊपर है। ऐसे आप 1000 उदाहरण ढूंढ सकते हो।
2: एक इतना इतनी नफरत और वो भी उन्होंने कैमरा के लिए प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पण होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी बहुत ही बत्ती बनती अब देश।
3: So while the Congress talks about technicalities and history making matters worse for them, our leaders, like their Member of Parliament Imran Masood, who made the singing of Vande Mataram an issue about his faith.
4: जब वंदे मातरम को इनका विरोध था, वंदे मातरम बोल के लोग नारा देके जेल में जाते थे, उस वक्त ये लोग भागते थे, इनका वंदे मातरम को विरोध था। और आज वंदे मातरम की बात करते हैं, वो पूरा वंदे मातरम वो जानबूझ के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं।
5: भैया आप पढ़ो ना, मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना, मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा, मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ मैं अपमान नहीं करूँगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा, हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं।
3: And that brings us to the simple questions. Will the national song now be sung in its various versions? Why the discomfort with Vande Mataram in full? And is the national song being used to bait the opposition into a test of nationalism? And let me actually start by putting that question to Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP and also somebody who has an additional responsibility. Congratulations, first of all, on that, Pradeep.
6: Thank
3: Bhandari.
6: You, Padmaji.
3: The Congress will say this was the version, and that's what Mr. Kharge said, that Jawaharlal Nehru sung this version, Rabindranath Thakur sung this version, Gandhiji sung this version. So why should the Congress sing any other version just because you insist?
6: We all follow the Constitution of India, and the Constitution of India tells us that any law which is passed by the Indian Parliament has to be followed by the citizens of the country, and every patriot does it who believes in the Constitution of India. Only those who are political fronts of the Dimagi Naxal ecosystem will not follow the law of the land. So A, this is the law of the land which is passed by the parliament. B, let me take the argument forward. If we extend this argument ki bhai musalman ke neta ko dikkat hai, hame dikkat hai, usko dikkat hai, with that same concept, Article 370 was abrogated by the parliament of the country. Earlier you used to have two flags, not just one national flag, and the Congress also opposed it. With the same premise, the Congress party even opposed CA. With the same premise, the Congress party has opposed various laws passed by the parliament of the country. And this is exactly the Dimagi Naxal ecosystem which the Prime Minister spoke about. But I'll make a very important point, and factual inaccuracies in Congress's argument. Factual inaccuracy number one, that A, is the Congress party indicating that every freedom fighter who sang Vande Mataram in entirety in 1905 was doing Hindu-Muslim? Point number one. Point number two, it was no other freedom fighter except Jawaharlal Nehru who succumbed to Muslim League's pressure in 1937. I have Nehru on record on 20th October 1937 saying that according to Nehru, it would irritate the Muslim League and Muslims. And with the same premise, you had the partition happening. So just because something has happened does not mean it is correct. And I'll tell you why am I saying. On the eve of independence, on 15th August 1947, on 6:30 a.m., on Akashwani radio, you have Sardar Patel requesting Pandit Omkarnath Thakur to recite the entire Vande Mataram. On 15th August, on his personal request, because Nehru had objected to it. So the essence of the Indian constitution always was the entire Vande Mataram, and more importantly, Padmaja, it's the law of the land which everybody has to apply to. If you do not do so, well, fine, that exposes your Dimagi Naksal mindset and law will take its own.
3: Okay, you brought in Dimagi Naksal also. I will put that question.

0: इसमें बहस हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस वक्त वो 1950 में ये नेशनल सॉन्ग करके स्वीकारा गया, नेशनल एंथम करके नहीं, लेकिन उसका स्टेटस वही था और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन दो स्टैंडर्ड्स ही स्वीकारे गए थे।
1: पर सर,
0: और वो
1: तो
0: जब
1: आज के कानून
0: पारित हुआ उस वक्त
1: जरा सुनिए
0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें थे, उन्होंने भी मान्य किया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद वाजपेयी साहब का सरकार आया, उन्होंने भी मान्य किया, वो सब लोग मान्य करते थे। एक बात मैं बोलता हूँ कि आज इतने बड़े पैमाने पे ये सारे वंदे मातरम की बातें करते हैं, मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वंदे मातरम की घोषणा देके नारा देके लोग जेल में जाते थे, पुलिस के पटके खाते थे, लाठी खाते थे, गोलियां खाते थे और जेल में जाते थे। मौलाना आजाद भी वैसे ही गए, खान अब्दुल गफ्फर खान भी
1: आप सही कह रहे हैं दलदाई साहब,
0: सारे मुसलमान जो गए वैसे ही गए।
1: हम इतिहास को डिस्कस कर चुके हैं, 2026 में अगर कानून आया है क्या हर किसी को वो कानून मानना चाहिए? और वंदे मातरम को मैं एक एज अ फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि उसको पूरे 6 अगर छंद गा लिए जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा?
0: ऐसा
1: उसके 6 स्टैंजा गा के बिगड़ क्या जाएगा?
0: इसकी थर्ड ये देखिए, उसकी ठीक ढंग से चर्चा नहीं हुई, कानून गड़बड़ी में पास किया गया, ठीक ढंग से उसकी चर्चा नहीं हो गई थी, वो पूरी चर्चा होनी चाहिए थे और उसके बाद पास करेंगे तो मैं ये कहूँ
1: ये तो टेक्निकलिटी है,
0: वो बोल सकते हैं,
1: ये आप टेक्निकलिटी कर रहे हैं। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं,
0: मेरा सुनने वाले होंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपकी ये जो आदत है ना, बिल्कुल गलत बात है।
1: सर
0: सुनिए, आप कौन लगते हैं ऐसे इस तरह से बातें करने वाले? मुझे बुलाया है ना, मुझे बुलाया तो ठीक ढंग से बात करो, पहले मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। आप चमचेगिरी सरकार की मत करो, मुझे बोलने दो।
1: सरकार की बात नहीं है ये, राष्ट्रगान
0: की है कि इसमें ये, अरे राष्ट्रगान है, हम भी मानते हैं। ये देखिए, मैं हुसैन दलवाई हूँ, मैं गणपति के उत्सव में जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल ही नहीं, ये इस देश के सेक्युलरिज्म का सवाल है, ये आप लोग जानते ही नहीं। ये सेक्युलरिज्म खलास करना चाहते हैं, ये जो इसराइल में जो राज है ना, वैसा राज यहाँ चलाना चाहते हैं।
1: पर वंदे मातरम पूरा गाने से सेक्युलरिज्म कैसे खत्म हो जाएगा?
0: हिटलर चाहिए,
1: सेक्युलरिज्म कैसे खतरे में आएगा वंदे मातरम अगर पूरा
0: सवाल ही खत्म हो जाएगा?
1: कैसे
0: सवाल ही नहीं, हर बात में ये हो रहा है मैडम, हर बात में जो चला है ना हिंदुत्व, इसका मतलब ऐसा है दे वॉन्ट टू स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
1: हाँ,
0: ये उनके दिमाग में है।
1: व्हाट इन द वंदे मातरम
0: गुरुजी बोले हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, गोडवल गुरुजी बोले हैं। वो गोडवलकर गुरुजी को बोलते हैं कि ये गलत था, ऐसा बोल रहे हैं क्या?
1: सर लेट्स लीव असाइड गोडवलकर फॉर अ सेकंड, आई विल आस्क यू वेरी डायरेक्टली, यू सेड दे वांट टू अटैक सेक्युलरिज्म,
0: गलत बात है।
1: व्हाट इन वंदे मातरम पुट सेक्युलरिज्म एट रिस्क?
0: ये देखिए, वंदे मातरम की दो स्टांजा जो संस्कृत में आए हैं उसमें सुजलाम सुफलाम इस देश के निसर्ग की और इस देश की बड़ी तारीफ की गई है। आगे के 4 जो हैं उसमें हिंदू देव देवता हैं, इसलिए टैगोर साहब ने कहा कि ये दो स्टांजा जी लीजिए, बाकी का मत लीजिए। मेरा ये कहना नहीं कि आज क्या करने का, मेरा कहना ऐसा है कि जिनको ये देश हिंदुत्ववादी बनाना है इसलिए जानबूझ के लाया गया है, दूसरी कोई बात नहीं। ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल नहीं, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ की बात है, ये बात जरा ध्यान में लीजिए। ये सेक्युलरिज्म मानते हैं क्या? आप इनको क्यों नहीं पूछते क्या आप सेक्युलरिज्म मानते?
1: पूछ लेते हैं। सौमित्र चटर्जी इज अ डिसेंडेंट,
0: वो
1: सौमित्र चटर्जी इज अ बंकिम, इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बंकिम चटर्जी। एंड मिस्टर चटर्जी, लिसन टू मिस्टर दलवाई, ही इज सेइंग वो गणपति में जाते हैं बट डोंट ट्राई एंड इम्पोज हिंदुत्व आइडियाज थ्रू वंदे मातरम ऑन हिम और एनीवन एल्स।
2: दैट इज द वे ही इज टॉकिंग, इट शोज हाउ कांग्रेस थिंक्स दैट या बाय फाइव जॉब, द वे ही इज एस्टैब्लिशिंग हिज आइडियाज, ही इज still thinking that India is their fiefdom and more and

0: up, he is talking of secularism. When the constitution was made, was there the term secularism in the preamble? He is talking of the constituent assembly, everything. Was the term secularism was in the preamble? I put the question to him.
1: Mr. Dalvai. Mr. Dalvai, please respond and we will cut to the big windows and come to Pradeep Bhandari also. Mr. Dalvai.
2: ऐसा है प्रियम्बल में है कि नहीं ये सवाल नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है और उसको सेक्युलर और समाजवादी ये बातें डाली गई है, वो मान्य की गई है, सब लोगों ने मान्य किया था उसको, भाजपा ने विरोध नहीं किया था, ध्यान में रख लिए। अभी इस तरह का सवाल उठाना भी गलत है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये सेक्युलर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार भी ये कहा है। अभी सेक्युलरिज्म के खिलाफ के जो लोग हैं वो जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं, दे वांट टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सब चला है।
1: प्रदीप भंडारी, ये तो हो गया ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। द क्वेश्चन विच हैड बीन

0: कम्युनल है, हुसैन दलवाई तो ये भी कहेंगे आर्मी भी कम्युनल है। दूसरी रेजिमेंट देते हैं, राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय। क्या इनके हिसाब से जो मुसलमान आर्मी के अंदर जा रहा है वो कम्युनल मुसलमान है? आर्मी के वॉर क्राय के अंदर देश की संस्कृति है। अगर ये हुसैन दलवाई की जिन्ने वाले माइंडसेट को आगे लेके जाए तो बोलेंगे आर्मी के अंदर भी जो ये क्राय चल रहा है वो भी मुसलमान वाला मुसलमानों के खिलाफ है। ये जिन्ना वाली सोच है। वंदे मातरम वो संग बाय हिंदूज एंड मुस्लिम से 1905। रहमतुल्ला सहवानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1896। वॉज ही अ कम्युनल मुस्लिम एज पर हिम? वॉज बाल गंगाधर कम्युनल? वॉज रविंद्रनाथ ठाकुर हू सैंग द एंटायर वंदे मातरम इन 1896 कम्युनल? इट वॉज प्रिसाइसली नेहरू इन 1937 हू सकम्ब्ड टू जिन्नास प्रेशर and who agreed to partition of the country.
1: But Rabindranath Tagore agreed to it. When Nehru ji spoke to Rabindranath Tagore, he agreed.
0: Because Nehru prevailed. With that logic, even temporarily, there was Article 370 which other freedom members of the Constituent Assembly had to agree as temporary. But these people made it as permanent. And it was Shama Prasad Mukherjee who opposed it. Something which is a historical wrong has to be corrected because the spirit of the Indian Constitution is entire Vande Mataram. What is Hindu Muslim and Vande Mataram? And if it is Hindu Muslim, are the war cries of army also Hindu Muslim?
1: Mr.
2: ऐसा ये गलत बातें कहते हैं। एक तो ध्यान में रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब पास हुई तो वंदे मातरम के दो स्टैंजास ही उसमें,
0: आप उनका दिखा दो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला दो स्टैंजास होने चाहिए
2: की आदत है बार
0: मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं दिलवाई साहब,
2: उनका झूठ सही
0: दिलवाई साहब कोट कर दो,
2: एक तरह से एक आर्मी का आदमी
0: दिलवाई साहब कोट कर दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, मैंने कोट कर दूंगा।
2: ये नेशनल सॉन्ग क्या है इसमें फर्क नहीं इनको मालूम?
0: अरे दलवाई साहब मैं आपको मालूम है कोई अल्लाह अकबर बोल के कोट है
2: पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकता है,
0: अरे वो अलग बात है। वॉर क्राय आर्मी का उसमें भी कम्युनल है क्या?
2: अल्लाह अकबर बोल के भी कासिम का
0: ना अल्लाह अकबर कोई भारत की सेना का वॉर क्राय नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की सेना का है। आप अपने घर पर अल्लाह अकबर बोल के इबादत करते हुए, आर्मी का वॉर क्राय अल्लाह अकबर नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी का वॉर क्राय अल्लाह अकबर है। मैंने वॉर क्राय बताया, वापस से बोलता हूँ, राजपूत रेजिमेंट कहती है बोलो बजरंग बली की जय, क्या मुसलमानों को बोलोगे कि हिंदुस्तान की आर्मी में नहीं है आपके साथ से? व्हाट इज ही सेइंग? No, let's take that argument forward.
1: Let him reply. Let him reply. Mr. Dalvai, about the war cry of the Indian Army.
0: That is also with that logic.
1: Go on, Dalvai Saab. About the war cry of the Indian Army, when any soldier chants Bajrang Bali ki Jai or they invoke Durga Mata on the war scene.
2: Indian Army ki baat alag. Main ladai karne ke liye jata hoon to ko kya nara deta hoon, ye alag baat hai.
0: अरे वो वॉर क्राय क्या बात कर रहे हैं? वंदे मातरम में क्या अलग हो गया?
2: ये दो बातें इकट्ठा लाना बिल्कुल गलत बात है
0: दलवाई साहब। वंदे मातरम पूरे गाने में क्या एंटी मुसलमान?
2: अल्लाह अकबर बोल के भी हल्ला कर सकता है, ये इनके दिमाग।
0: अरे वो अल्लाह अकबर करके जो हमला करते हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, आप उसको छोड़ो, आप उस पर मत जाओ। व्हाट इज एंटी मुस्लिम एंटायर वंदे मातरम?
2: ये इनके इनके दिमाग में हिंदुत्व,
0: अरे आपके दिमाग में जितना गुस्सा हुआ है हमारे दिमाग में संविधान है,
2: दिमाग में सनातन धर्म की बात है, इनके दिमाग में सनातन धर्म की बात है, हिंदू धर्म।
0: सनातन धर्म तो भारत के संविधान का एसेंस है, बाबा साहेब अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लो,
2: जिसका इन्होंने खून किया ना, वो गांधी जी हिंदू थे, वो हमारे नेता थे, वो हमें आज भी गांधी जी का नाम हम सर झुका के करते हैं लेते हैं।
1: ओके, लेट मी ब्रिंग इन सुमित्रो चैटर्जी बैक इन एंड आई विल आल्सो ब्रिंग इन विवेक बंसल ऑन दिस। सुमित्रो चैटर्जी, मिस्टर दलवाई इज आर्ग्यूइंग ओवर हियर दैट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ हिंदुत्व इन द अदर स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मिस्टर चैटर्जी, he says that there is a spirit of Hindutva and there's an imposition of Hindutva.
3: That is their prerogative to define Vande Mataram as per their way. But if you are an Indian, you have to accept Vande Mataram in all six stanzas. First. Second, Vande Mataram is not the spirit of Hindutva. Vande Mataram is the spirit of patriotism. That is the problem with the Congress Party. They always mix up patriotism with communal feelings. They are doing it purposefully for keeping their vote bank intact. They are afraid to call a spade a spade. They are afraid to accept Vande Mataram as a national song in all six stanzas.
1: Mr. Bansal?

0: Islamic doctrines of Wahadat e Deen and Sulah e Kul. Remember that when he was the Congress president, first elected at the age of 35 in 1923 and held the longest continuous term from 1940 to 1946, Vande Mataram was sung in its entirety at every session of the party. So at that time, in 1923, when he was first elected, Vande Mataram was being sung in its entirety. So Abul Kalam Azad had no problem with all of Vande Mataram. He didn't think that it was an imposition of Hindutva, Dalvai Saab.
1: मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाल है। दो स्टैंडर्ड्स का प्रॉब्लम मौलाना आजाद को नहीं था और
2: स्टैंडर्ड्स की बात है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं।
1: ये वंदे मातरम बोल के लोग जरा अभी मेरा सुनेंगे क्या?
0: सर वो 1923 में बने थे। He was first elected in 1923. That time वंदे मातरम had not been truncated.
1: मौलाना आजाद ने भी लड़ाई की ब्रिटिशों के साथ,
0: पर सर उन्होंने तो पूरा वंदे मातरम गाया भी गवाया भी।
1: वंदे मातरम वंदे मातरम, ये लोग तो वंदे मातरम के खिलाफ थे उस वक्त, ध्यान में रखिए। वंदे मातरम बोलना पड़ेगा इसलिए भाग जाते थे वो, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते नहीं थे, ब्रिटिशों के खिलाफ।
0: सर लीव दैट असाइड, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द फंडामेंटल क्वेश्चन यू रेज्ड अर्लियर, कि हमें हमें दो स्टैंजा से प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी के स्टैंजा हैं वो हिंदुत्व इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि वहां दुर्गा स्तुति की बात की गई है।
1: स्वतंत्र दिन बनाया नहीं जाता
0: सर, कोई बात नहीं, आप उनको अटैक कीजिए, आप उनको अटैक कीजिए, दैट्स अ पॉलिटिकल वॉर। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद वंदे मातरम?
1: उसमें जो अशोक चक्र है वो भी उनको मान्य नहीं, ये गोलकर कोरोन ने साफ लिखा है, अभी तक वो ये कर रहे थे, अभी हमें वंदे मातरम की बात
0: हो। हुसैन दलवाई साहब, बाय ऑल मींस यू वांट टू डिबेट विद द बीजेपी एंड आरएसएस ऑन देयर कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यू प्लीज डू सो। माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई देयर इज एन ऑपोजिशन टू वंदे मातरम इन इट्स एंटायरिटी। लेट मी कोट टू यू अनदर एग्जांपल, डू यू नो व्हाट अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, लेट मी कोट टू यू रफी अहमद किदवई, he said Vande Mataram has been sung at the beginning of Congress sessions for years. Muslims began opposing it only since 1930. This is Rafi Ahmed Kidwai saying it. Bengali writer Rezaul Karim, he also echoed a similar sentiment in 1930s, where he wrote that it is the British who incited the controversy to exclude Muslims from the freedom struggle. So this entire thing that Vande Mataram is against Islam or it is imposition of Hindutva, you had Rezaul Karim who said that it is the British who were trying to divide and rule by making Vande Mataram seem anti-Muslim. And these are all tall leaders in the Congress who said it. We are succumbing to what the British were trying to do at that time, sir, in the 1930s.
1: एक तो ऑफिशियल इसमें पूरा वंदे मातरम बोलने के बारे में कानून हो गया, बाहर कोई क्या करता है, झंडा वंदन जब होता है तो वंदे मातरम बोला ही नहीं जाता, बहुत जगह जहाँ बोला जाता है दो स्टैंजर्स बोले जाते हैं, उसमें कोई ऑफिशियल उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकिन मुसलमानों को ये चर्चा में ये कहूँगा, अगर कहाँ पूरा वंदे मातरम कहता है तो उसका आदर कीजिए, वो आप नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका आदर होना चाहिए। कहाँ भी अनादर करने की कोई भी मजहबी बात है उसका अनादर किसने भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा हमेशा स्टैंड रहा है।
0: थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा अनादर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ये बता दीजिए कि उसको पूरा क्यों नहीं गाया जा रहा है।
1: सेक्युलर पर्सन,
0: I thank you. If you are secular, I mean, you say you are secular, I'm sure you are secular, and I really appreciate that. I appreciate that you are saying it shouldn't be disrespected. So then answer me, why was it cut short in Goa? Why was it not sung in Kerala? The Kerala government did not sing at all in any of their Independence Day functions. Why? ये तो अनादर ही हुआ ना, उसको नहीं गाना।
1: ऐसा है कि ये गाना नहीं है, गाना अलग है और नेशनल सॉन्ग अलग है। नेशनल सॉन्ग यानी नेशन के बारे में आप बोलते हैं, आप नेशन को छोड़ के देव देवता के बारे में बोलने लगे तो कैसे चलेगा? आप भी जरा इसका
0: प्रदीप भंडारी
1: और रफी अहमद से की बातें आप कर रहे हो, उन्होंने पूरा गाया था, ये सही बात नहीं है।
2: ही रिप्रेजेंट्स द स्कूल ऑफ थॉट रिप्रेजेंटेड बाय शर्जील इमाम, that is exactly what he does not represent, the school of thought represent reflected.
0: No, why are you bringing Sharjeel Imam?
2: Because he's the man who defended Sharjeel Imam on record, I'm only saying that his school of thought says

0: isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
1: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr.
2: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a 1 month notice followed by 3 month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
3: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
4: लगत आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिलकुल ठीक नाही आहे. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चलाकर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
5: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रिवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओ ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
2: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
3: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे ही बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.

0: levels of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities. A new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala.
1: Welcome back, Shivriya Focus to Maharashtra. Now, the state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a 1 month notice followed by 3 months suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
2: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
3: लगता आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नाही आहे. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
4: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रिवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads

0: and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
1: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला, टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
2: लगता आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी तो सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
3: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरी दूसरी जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए वक्त देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, NGOs ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
0: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
1: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे है बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
4: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
5: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो.
0: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
6: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A 3-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adiala jail to Shifa International.

0: हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं।
1: भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं।
2: The stress of the agriculture sector and its removal has been one of the cornerstones of the Prime Minister's policies, something he has been striving towards eradicating right from the word go.
0: आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा?
1: इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहा था, राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP मिलना चाहिए। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी, लेकिन हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP दिया जाएगा।
0: भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा।
1: भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
2: A nation is strong when its economy is strengthened right down to its most basic participants. In this, the Prime Minister's stand has been towards pushing for self-confidence and self-reliant innovation amongst the young entrepreneurs of India.
1: इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा सरकम है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया।
0: हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है।
2: Pushing for high-end, self-reliant technology, 12 years of advancement has built a solid foundation for India at the helm of enterprise.
3: Electrical se lekar ke electronic tak, from make in India, chemicals se lekar ke pharmaceutical tak, from make in India, automobile se lekar ke agro value addition tak, from make in India. पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया। सम सैटेलाइट हो या सम मरीन, कम मेक इन इंडिया।
0: इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करा है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा।
3: अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।
0: एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए।
2: Security is beyond compromise, and the Prime Minister has been very clear in his attitude towards how the scourge of Naxalism should be handled. He has always made it a point to thank the forces that defended the nation from homegrown extremism.
3: And I am happy that in our security forces' efforts, especially in the left-wing extremism areas, in a very large amount, नौजवान वापिस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवाद देश को रक्त से रंजित कर रहा है। आए दिन हिंसा की वारदातें करना, भाग जाना, जंगलों में छिप जाना, लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण, विकास की नई नई योजनाओं के कारण, जन सामान्य को जोड़ने के प्रयासों के कारण जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 126 जिलों में मौत के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा था, आज वो कम होकर के करीब करीब 90 जिलों तक आ गया है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं।
3: 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है।

0: कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है।
1: 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे।
2: यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है। रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है।
3: हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
4: आपने झारखंड के बाहर
5: Over the years, the Prime Minister's vocabulary has changed as his concerns and his concentration moved from access to aspiration. He had his mandate very clear in his mind as he saw himself evolve as well with the country. And perhaps that is also why the sweep of his Independence Day addresses have become a phenomenon in themselves.

0: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders. The Nepal Dialogue. 27th August, Kathmandu, Nepal.
1: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
2: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल. अशा प्रकारचा नियम मी काढला आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
3: लगता आहे की हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
4: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रिवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए.
1: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulangi area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
2: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए. बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे हैं बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
5: There have been multiple accidents. Just yesterday, one 11-year-old child has passed away because of an accident. Yet the government refuses to wake up. There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
6: अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो।
1: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
7: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A three-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adiala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches, and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his eyesight. Khan had developed a retinal condition affecting his right eye.
8: सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल में वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं।
7: The issue is not just medical, it is also about how Khan has been kept inside the Adiala jail. Khan supporters have repeatedly alleged that he has been kept in isolation and has been subjected to mental and physical torture. Amid all of this, the Supreme Court's order represents a delicate balance. On the one side, Khan's constitutional right to health and medical care. On the other, the authorities' concerns over security, access, and political mobilization. Bureau Report, NDTV.
1: And well, that's all that we could pack for you in this edition. Slipping into a very short break. Good night. See you tomorrow.

0: get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
1: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही, आता 1,65,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा, पण ह्यापुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही. आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल. 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे, नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल, निलंबित करण्यात येईल. परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल, अशा प्रकारचा नियम मी काढला. आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते.
2: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है. यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है. लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है. ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है. जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है.
3: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए. मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए. जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, NGOs ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए.
0: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mohalange area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
1: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे हैं बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
4: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
5: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो.
0: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
6: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A 3-member bench has ordered a